सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजरी की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले

इस मिनट पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों, दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना।

आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना

आवश्यक है। आप माता पिता हैं। यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय है।

0: हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अड़ी सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़ वो काटू नती जय वरे अधिकार हंग्र अपना भी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार

0: बहन बोना गीत बाद आप सभी फेरे स्वागत कर हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जिम के अंजलि बोन गीत थकी पहले आप विषय बताड़ियों की आज आप बात करवा वाला हूँ जोर में वायरस आले वना खती अपन फसल नु बचाव हेते करो। बहन बोनो अपन देखा हूँ की अपनी खेती है वे प्रकृति मत आधारित रहे हैं जेन करते अपने मौसम ने जी नानी मोटी स्थिति रहे है वन हिदु प्रभाव अपने फसल माते पड़े है। कारेक ज्यादा वर्षा पड़ी जाए कारेक हुकू पड़ी जाए ने कारेक खूब ज्यादा वायरस आले है आन सब खती अंजलि बोन अपने किसान भाई बोन ने खेती माते असर पड़े है। अपन देखा हूँ की तेज वायरो ने आंधी नी जे समस्या है अना खती अपने फसल माते खूब ज्यादा नुकसान थाय है।
1: हवे मनीषा बोन अपने देखा हूँ की अपने जे किसान भाई बोन है हेतवर मेहनत करे है अपनी फसल ने तैयार करवा बल्ले ई मिट्टी जोते है बीज नाके है सिंचाई करे है खाद डाले है ये रात और दाड़ो इन मेहनत करे है ताकि इन्होंने खेतरों में हरियाली बनी तकी रहे। पर आपने देखो

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कमजोरी और खून की कमी से बच्चों को कैसे बचाएं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बच्चों का स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान होना हर परिवार की चाहत होती है।
0: जी हाँ,
1: जब बच्चा खेलता है, सीखता है, दौड़ता है और हंसता है तभी उसका बचपन सही मायने में खिलता है। लेकिन कशिश, जब बच्चा बार बार थका हुआ लगे, सुस्त रहे, जल्दी बीमार पड़े, ध्यान न लगा पाए या उसका शरीर कमजोर दिखे तो यह सिर्फ सामान्य थकान नहीं बल्कि कमजोरी या खून की कमी का संकेत भी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कई बच्चों में कमजोरी और खून की कमी एक छिपे हुए लेकिन गंभीर समस्या बनती जा रही है। कई बार माता पिता इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चा कम खाता है इसलिए कमजोर है या बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन श्रोता साथियों अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो यह समस्या बच्चों की पढ़ाई, शारीरिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहने वाली है। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि कमजोरी और खून की कमी से बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं। साथियों आपको बताएं तो खून की कमी का मतलब सिर्फ शरीर में रक्त का कम होना नहीं होता,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि शरीर तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंच पाना भी एक समस्या हम कह सकते हैं अंजलि जी। इसका असर दोस्तों बच्चे की ऊर्जा, ध्यान और विकास पर पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि हम कमजोरी और खून की कमी को पहचानें, साथ ही उसके कारणों को समझें और बचाव के लिए उपाय अपनाएं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चे के शरीर में जरूरी पोषक तत्वों जैसे कि आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो सकती है। इससे श्रोता साथियों बच्चा कमजोर महसूस करता है और ये समस्या धीरे धीरे भी बढ़ती है और कई बार तो साथियों ये जल्दी समझ में भी नहीं आती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इसके लिए हमें इन सारी समस्याओं को पहचानने की जरूरत होती है। तो कुछ सामान्य संकेत हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चा कुछ भी कार्य कर रहा हो तो वो जल्दी थक जाता है, चेहरा फीका या पीला दिखता है, पढ़ाई या खेल में उसका मन नहीं लगता, बार बार चक्कर और कमजोरी आती है, साथ ही भूख कम लगती है और बार बार बीमार पड़ना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चिड़चिड़ापन। श्रोता साथियों ऐसे संकेत दिखे तो इन सारे संकेतों को हमें गंभीरता में लेना है और तुरंत बच्चों को डॉक्टर को हमें दिखाना है। श्रोता साथियों कमजोरी और खून की कमी के कारण पोषण की कमी बच्चों के अंदर हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: सही भोजन न मिलना सबसे बड़ा इसका कारण है। अगर बच्चे के भोजन में आयरन कम है तो खून की कमी हो सकती है, बार बार जो बीमारी है वो शरीर को कमजोर भी कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार यह भी होता है कि पोषण की कमी के कारण बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। जंक फूड ज्यादा खाना, पौष्टिक भोजन कम करना, ऐसी गलत आदतों के कारण भी ये समस्या बच्चों को हो जाती है। तो श्रोता साथियों इन सारी चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें बच्चों के अंदर के जो लक्षण है उन्हें पहचानने की कोशिश करनी है।
0: बिल्कुल,
1: हम बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें कि किस तरीके से बच्चों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अगर वो परिवर्तन हमें सामान्य नहीं लग रहा है तो तुरंत उनका चेकअप हमें डॉक्टर के पास जाकर कराना है।
0: जी जी,
1: अब यही बात आती है कशिश के बच्चों को कमजोरी और

0: के बच्चों की थाली में ऐसी चीजें रखें जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चना, गुड़, दालें, मूंग, ये सभी हो।
1: बिल्कुल।
0: विटामिन सी बच्चों को जरूर दें, यानी कि आयरन के साथ विटामिन सी मदद करता है। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर हमें बच्चों को देना है। श्रोता साथियों, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, बच्चों की थाली में अनाज, दाल, सब्जी, फल, दही सब कुछ होना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जो हैं वो सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों को बताना है कि सुबह का नाश्ता उनके लिए बहुत जरूरी है। बच्चा अगर सुबह नाश्ता कर लेता है तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। इससे बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो भी वहाँ पर उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है और उसका शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बनी रहती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से जब बच्चों में खून की कमी की समस्या हो जाती है तो माता पिता को उसे कैसे पहचानना है और बच्चों को स्वस्थ कैसे रखना है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी क्यों ना दोस्तों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाए पहले।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान ही पा रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को कमजोरी और खून की कमी से हमें बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, सबसे पहले हमने जाना था कि आयरन से भरपूर हमें भोजन उन्हें देना है, विटामिन सी हमें उन्हें देना है, संतुलित भोजन देना है और भोजन छोड़ने की आदत हमें बच्चों में नहीं डालनी है।
1: जी जी।
0: इसी के साथ हमें कशिश बच्चों का जंक

0: बिल्कुल,
1: इन सारी चीजों से हमें बच्चों को दूर रखना है, संक्रमण कम करना है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि डॉक्टर द्वारा बताए गए उपाय

0: पिता को कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले तो माता पिता ये ध्यान में रखे कि बच्चा क्या खा रहा है और साथ ही बच्चे को क्या पसंद है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों सिर्फ पसंद का खाना नहीं देना जरूरी नहीं होता, बल्कि बच्चों को साथ में पोषण भी देना होता है। बच्चा अगर आपको बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा है तो इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं करें। साथ ही अगर बात करें स्कूल जाने वाले बच्चों की, तो माता पिता को अंजलि जी स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: उनके भोजन को लेकर ध्यान दे श्रोता साथियों। साथ ही कीड़े की दवा और स्वास्थ्य जांच करवाते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप उन्हें ये बताएं कि अच्छा खाना खाना ताकत देता है, हरी सब्जियां उन्हें किस प्रकार से ढेर सारे फायदे दे सकती है, और आप उन्हें ये भी बोले कि कमजोरी छुपाने वाली चीज नहीं है बल्कि बताने वाली बात है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि कई बार बच्चे डर के कारण या फिर कह सकते हैं कि घबराहट के कारण अपने माता पिता को कुछ चीजें नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में माता पिता एक दोस्त की तरह अगर अपने बच्चे से बात करेंगे तो बच्चों को हम कह सकते हैं कि सेफ फील होगा, जिससे बच्चे अपनी हर बात अपने माता पिता से शेयर कर पाएंगे।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, कई बार गांव समाज में कमजोरी को सामान्य मान लिया जाता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बच्चा कमजोर पैदा होता है, कई बार पोषण की कमी उसे कमजोर बना देती है। ऐसे में जागरूकता से बहुत बदलाव संभव हो सकता है।
1: जी हाँ, इसी के साथ कशिश बात करें तो बच्चों में कमजोरी और खून की कमी को नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि बच्चों के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: जी,
1: सही खान पान, आयरन युक्त भोजन, स्वच्छता, समय पर जांच और जागरूकता से इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों को मजबूत बनाना सिर्फ अच्छा खाना खिलाना नहीं बल्कि उनके पोषण की जरूरतों को समझना है।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ खून, मजबूत तन और सजग मन ही यही स्वस्थ बचपन की पहचान है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारे बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों में कमजोरी और खून की कमी केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि उनके वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा विषय है। एक कमजोर बच्चा कशिश केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि कई बार मानसिक, भावनात्मक और शैक्षिक रूप से भी प्रभावित हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो उसका असर धीरे धीरे बच्चे की ऊर्जा, एकाग्रता, सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास तक पहुंच सकता है। इसलिए समस्या को सामान्य समझकर टालना उचित नहीं है।
0: जी,
1: यह समझना जरूरी है कशिश कि बच्चों का स्वास्थ्य अचानक मजबूत नहीं बनता बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। घर की थाली, भोजन का संतुलन, समय पर खाना, स्वच्छता और परिवार की जागरूकता, ये सब मिलकर बच्चे के शरीर को ताकत देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई बार लोग सोचते हैं कि पोषण का मतलब केवल महंगा भोजन है, जबकि सच यह है कि सही जानकारी और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ से भी बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है। जरूरत है समझदारी और निरंतर ध्यान की। कमजोरी और खून की कमी से बचाव केवल इलाज का विषय नहीं बल्कि रोकथाम की प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल,
1: अगर परिवार कशिश समय रहते लक्षण पहचाने, बच्चों के खान पान में सुधार करे और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा ले तो इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। श्रोता साथियों, इससे न केवल बीमारी कम होगी बल्कि बच्चे अधिक सक्रिय, प्रसन्न और सीखने के लिए तैयार रहेंगे।
0: जी हाँ अंजलि जी, हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसी के साथ ही बच्चों के पोषण को केवल घर तक सीमित मुद्दा नहीं हमें मानना है। यह समुदाय, स्कूल और समाज की भी साझा जिम्मेदारी है अंजलि जी, क्योंकि जब परिवार, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे तभी स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव तैयार हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर स्वस्थ समाज का निर्माण करता है साथियों। ऐसे में बच्चों को कमजोरी और खून की कमी से बचाना केवल उनके शरीर को मजबूत करना नहीं है, बल्कि उनके सपनों, क्षमताओं और भविष्य को भी मजबूत बनाना है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जिस बचपन में दोस्तों पोषण, ऊर्जा और स्वास्थ्य होता है वही बचपन आगे चलकर आत्मनिर्भर और उज्ज्वल जीवन की राह बनाता है अंजलि जी।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चों की थाली में पोषण, जीवन में ऊर्जा और शरीर में स्वस्थ खून, यही मजबूत बचपन, सशक्त भविष्य की असली बुनियाद है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में आज श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें रही है कि बच्चों में कमजोरी और खून की कमी को हमें कैसे दूर करना है और किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी,
1: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,
2: चल चल और तेज भाग बबीता।

0: छोरों को पीटना है कि इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: गाली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब पता रही है।

0: जो भी कहेगी वो सब कराएंगे।
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साल भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ है।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

काम होगी मेरे। मैं भी तो नहीं हुई पूछने वाली थी।

0: साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाघधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हो हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को। नमस्कार।

0: मोटा अनाज मोटा अनाज।
1: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
2: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
0: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
1: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
2: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपने रहो या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल रहो, ये भी आपड़ा थकी कई आश वाके है। हो फिर अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दंगा, पानी ने बचा दंगा, ने आपकी धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: हो वे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: हो वे आज नाना कदम है, ये आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, वो अकेले रहकर न तो अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से जी सकता है और न ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के इस आधुनिक युग में जहाँ भौतिक सुविधाओं की भरमार है कशिश, वहीं मनुष्य के भीतर एक अजीब सा खालीपन और अकेलेपन की भावना बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसका मुख्य कारण श्रोता साथी सामूहिकता से दूर होना है। वास्तव में सच्ची खुशी और संतोष सामूहिक जीवन सहयोग और सहभागिता में निहित है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हम हमारे दोस्तों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत में पहले गीत सुन लिया जाए।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, जहां साथियों बात करते हैं जीवन की सच्चाइयों की और उन मूल्यों की जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जैसा कि आज के कार्यक्रम का विषय बेहद खास है दोस्तों, बात कर रहे हैं सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खालीपन क्यों महसूस करते हैं, और जब हम जागृति जी अपने दोस्तों परिवारों या समाज के साथ होते हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें बड़ी लगने लगती हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज दोस्तों इन्हीं दो पहलुओं को लेकर हम बात करेंगे कि क्यों असली खुशी अकेलेपन में नहीं है बल्कि साथ मिलकर जीने में छुपी हुई होती है। हम बात करें अगर सामूहिकता की, तो दोस्तों सामूहिकता का सीधा मतलब होता है मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ जुड़ना और एक टीम या समाज के रूप में आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल,
0: यह सिर्फ एक शब्द नहीं है जागृति जी, बल्कि हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक भावना है जो हमें मैं से हम की ओर ले जाती है। हम देखते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर कोई अपने अपने लक्ष्य में व्यस्त है, वहां सामूहिकता की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है साथियों,

0: में साथ देना और मिलकर जीवन को सार्थक बनाना है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम परिवार, समाज या किसी समूह के साथ जुड़ते हैं तो हमें अपनापन, सुरक्षा और आत्मीयता का अनुभव होता है। ये अनुभव ही वास्तविक प्रसन्नता का आधार बनता है।
1: जी,
0: प्राचीन भारतीय संस्कृति में सामूहिकता को विशेष महत्व दिया गया है। हम देखते हैं कशिश की वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत हमें सिखाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है।
1: बिल्कुल,
0: पहले के समय में संयुक्त परिवारों की परंपरा थी जहां सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे।
1: जी हाँ।

0: जाती थी।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओ, आज के दौर में एकल परिवारों का चलन बढ़ गया, ये हम सभी जानते हैं। लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचता है, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि मानसिक तनाव, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्या बढ़ती जा रही। कशिश
1: बिल्कुल,
0: ये स्पष्ट

0: आज के युवा साथी अक्सर ये कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से वह खुद ही अकेलापन महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, अकेले रहने से उनमें तनाव बढ़ता है, सोच नकारात्मक हो जाती है और आत्मविश्वास भी उनका कम होता है। वहीं जब वे समूह में रहते हैं तो सामूहिकता उन्हें भावनात्मक सहारा देती है, जीवन में संतुलन लाती है साथियों, और हमें मजबूत भी बनाती है। हम कह सकते हैं कि असली खुशियाँ हमें तब मिलती है जब हम अपने अनुभव, अपने दर्द और अपनी खुशियों को किसी के साथ बांटते हैं। जागृति जी,
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि परिवार में सामूहिकता का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि परिवार वह पहला स्थान है जहाँ

0: होते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताना काफी कम हो चुका है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ऐसे में हमारे युवाओं को ये याद रखना है कि सच्ची खुशी घर से ही शुरू होती है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं, सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है और हमने करी भी थी कि सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसे कि कशिश ग्रामीण जीवन में आज भी सामूहिकता के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। गाँव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, त्योहारों को मिलकर मनाते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये सामूहिक भावना ही गाँव की सबसे बड़ी ताकत है श्रोताओं। इसके विपरीत शहरों में लोग एक ही इमारत में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान रहते हैं, जिससे सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों आपसे कि सामूहिकता केवल सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब कशिश हम समूह में कार्य करते हैं तो हमें कई विचारों और दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है। इससे हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है और हम अधिक रचनात्मक बनते हैं।
1: जी
0: साथ ही टीम वर्क के

0: उनका साथ पाते हैं तो जीवन हमें आसान लगने लगता है। हम देखते हैं कि समाज में भी सहयोग, सहानुभूति और सेवा, ये सभी सामूहिकता के ही रूप होते हैं। अगर दोस्तों समाज में हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो समाज धीरे धीरे टूट जाएगा जागृति जी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो इससे समाज मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में सामूहिकता के महत्व को समझे, उसे अपनाने का प्रयास करें। हमें अपने परिवार और समाज के साथ समय बिताना होगा, उनके साथ संवाद करना होगा और उनके सुख दुख में सहभागी बनना होगा।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ ही हमें समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा भी देना होगा। यहाँ कहना गलत नहीं होगा श्रोता साथियों कि वास्तविक प्रसन्नता किसी भौतिक वस्तु या व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं है, बल्कि सामूहिकता में निहित है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर जीवन जीते हैं कशिश, तो हमें सच्चा संतोष और खुशी प्राप्त होती है।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए हमें अपने जीवन में सामूहिकता को स्थान देना होगा श्रोताओं, और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ हर व्यक्ति खुद को जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करे।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश की सामूहिकता जीवन का वो आधार है जो मनुष्य को सच्ची खुशी, संतोष और मानसिक शांति प्रदान करता है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें केवल साथ रहने की नहीं बल्कि साथ जीने की कला सिखाता है। साथियों, आज बदलते समय में जब व्यक्ति अपने आप में सिमटता जा रहा है, सामूहिकता ही वो सूत्र है जो हमें जोड़ सकता है कशिश।
0: बिल्कुल,
1: और जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है।
0: इसीलिए
1: श्रोताओं, हमें समझना होगा कि वास्तविक प्रसन्नता अकेलेपन में नहीं बल्कि मिलकर जीने में है।
0: बिल्कुल जागृति जी, अब सवाल ये उठता है कि सामूहिकता से इतनी असली खुशी क्यों मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि सामूहिकता हमें अपनापन महसूस कराती है। हम अकेले नहीं होते हैं और हमारी समस्याएं भी हमें हल्की लगने लगती है, साथ ही हमारी खुशियाँ भी बढ़ जाती है। जागृति जी, कहा गया है कि जैसे एक दीपक अकेला जलता है तो सीमित रोशनी देता है, लेकिन जब कई सारे दीपक एक साथ जलते हैं तो अंधेरा पूरी तरह मिट जाता है।
1: बिल्कुल।

0: और संतुलित बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: आज के इस तेज प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मकेंद्रित युग में जहां व्यक्ति अपनी सफलता और सुविधाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते अक्सर रिश्तों और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ देता है, वहां सामूहिकता एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे मार्ग को आलोकित करती है।
1: बिल्कुल,
0: यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली खुशी किसी अकेली उपलब्धि में नहीं है श्रोताओं, बल्कि साझा अनुभव, रिश्तों

0: यही भावना श्रोताओं हमें अधिक संवेदनशील बनाती है, उदार बनाती है और जिम्मेदार बनाती है।
1: जी हाँ।
0: सामूहिकता हमें सिखाती है कशिश की जीवन का असली अर्थ केवल मैं नहीं बल्कि हम में है। मैं सीमित है लेकिन हम असीम संभावना और खुशियों का विस्तार है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम अपने सुख दुख आशाएं और संघर्ष दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारा जीवन न केवल हल्का होता है श्रोताओं बल्कि और भी अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और आज आवश्यकता इस बात की और है कि हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने परिवार मित्रों समाज के साथ जुड़े। हमें फिर से उन मूल्यों को अपनाना होगा श्रोता साथियों जो हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं, जैसे कि संवाद हो गया, सहयोग हो गया, सहानुभूति हो गई और विश्वास। हमें समझना होगा श्रोताओं कि तकनीक और भौतिक सुख सुविधाएं हमारी जरूरतों को पूरा जरूर कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वे हमारे दिल को सच्ची

0: कि साथ जीना कैसे है, साथ बढ़ना कैसे और खुश रहना कैसे सीखना है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप युवा साथियों सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में मैं की जगह हम को अपनाइए, क्योंकि वास्तविक प्रसन्नता अकेलेपन में नहीं बल्कि सामूहिकता में ही निहित है। याद रखिए साथियों के

0: अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमें भी अपने मन में ठान लेना चाहिए कि अपने जीवन में हम सामूहिकता को पुनः स्थापित करेंगे, हम अपने रिश्तों को महत्व देंगे, समाज के साथ जुड़ेंगे और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को अपनापन और सम्मान मिले।
1: बिल्कुल
0: कशिश, यही वो मार्ग है जो न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से खुशहाल बनाएगा बल्कि पूरे समाज को भी समृद्ध और सुखी बनाएगा।
1: जी हाँ,
0: सच्ची प्रसन्नता किसी एक व्यक्ति की निजी उपलब्धि नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक साझा अनुभूति है जो तभी जन्म लेती है जब दिल आपस में जुड़ते हैं, हाथ एक दूसरे का सहारा बनते हैं और जीवन एक सामूहिक उत्सव बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही सामूहिकता का सार है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ अब हम श्रोता साथियों कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: जी हाँ।
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.com।

0: भाइयों बहनों, जेवर ग्राम सभा में दोने दूले हैं तो फैसला मजबूत थे है। वन अधिकार सिर्फ कानून न तो माँ जंगल थकी जरूर दोनों में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे हैं ये नहीं रक्षा कर रहे हैं, तो आओ बोलो में भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगलों में भविष्य सुरक्षित करा। बोलन की आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
2: सेहत में राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी थकी करूं, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाव रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा विषय रहेगा आपसे बातचीत का कि गांव के विकास में वार्ड पंच की क्या भूमिका होती है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, भारत को गांव का देश कहा जाता है और ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। देश की आत्मा गाँव में बसती है और इन गाँवों का समुचित विकास ही राष्ट्र की प्रगति का आधार बनता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम गाँव के विकास की बात करते हैं तो पंचायत व्यवस्था का महत्व स्वतः ही सामने आता है। इसी पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है वार्ड पंच। श्रोताओं, वार्ड पंच केवल एक पद नहीं बल्कि गांव के हर छोटे बड़े कार्यों का जिम्मेदार प्रतिनिधि होता है।
0: बिल्कुल,
1: वो अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को समझता है, उनके समाधान के लिए प्रयास करता है और विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, आपकी अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले बातचीत भी रही थी और विषय भी बताया था कि आज हमारा आपसे बातचीत का विषय है गांव के विकास में वार्ड

0: करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार श्रोता साथियों हम कह सकते हैं कि गांव के विकास में वार्ड पंच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वार्ड पंच ग्राम पंचायत का वह सदस्य होता है जो गांव के एक विशेष वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है जो स्थानीय लोगों की आवाज बनकर पंचायत में उनकी बात रखता है।
1: जी हाँ,
0: यही बात करें जागृति जी कि गांव के विकास में वार्ड पंच की क्या भूमिका है, तो श्रोता

0: सही ढंग से लागू करने में वार्ड पंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों, वार्ड पंच ग्राम पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य होता है। जैसा कि अंजलि आपने बताया, वार्ड पंच अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहता है, इसलिए उसे हर छोटी बड़ी समस्या का ज्ञान होता है, चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़क की खराब स्थिति हो या सफाई की कमी। वार्ड पंच इन सभी मुद्दों को पहचान कर पंचायत में उठाता है। वो केवल समस्या बताने तक सीमित नहीं रहता श्रोताओं, बल्कि समाधान ढूंढने में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल,
1: सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा। वार्ड पंच का कर्तव्य होता है कि इन योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाए। वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन योजनाओं

0: को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का कार्य करते हैं। इससे गांव में बीमारियों को कम किया जा सकता है। इसी के साथ वार्ड पंच बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता है और शिक्षा के महत्व को समझाता है, और वह यह भी सुनिश्चित करता है कि विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। गांव में होने वाले छोटे मोटे विवादों को सुलझाने में भी वार्ड पंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल,
0: वह आपसी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं जागृति जी की वार्ड पंच महिलाओं, दलितों और गरीब वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करता है। वह उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है।
1: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि गांव के विकास में जागरूकता बहुत जरूरी होती है। वार्ड पंच लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। वो लोगों को समझाता है कि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है। श्रोताओं, स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। वार्ड पंच अपने क्षेत्र में साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रयास करता है अंजलि। वो शौचालय निर्माण को बढ़ावा देता है, कचरा प्रबंधन के उपाय अपनाता है और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि स्वच्छ गांव स्वच्छ समाज यही विकास का पहला राज है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है। श्रोताओं, वार्ड पंच बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता है और स्कूल

0: छात्रों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करता है।
1: जी जी।
0: वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं कि गांव के विकास में किस तरीके से वार्ड पंच की भूमिका होती है। तो बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: बिल्कुल।

0: जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बताना चाहेंगे कि वार्ड पंच ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को रखता है और वह ये भी सुनिश्चित करता है कि निर्णय पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो।
1: बिल्कुल,
0: वार्ड पंच गाँव के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वन का सही उपयोग सुनिश्चित करना और उनके संरक्षण के लिए कार्य भी करते हैं। बाढ़, सूखा और कोई भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उस समय वार्ड पंच राहत कार्यों में मदद करता है और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि वार्ड पंच गांव की वास्तविक स्थिति को सबसे अच्छी तरह समझता है।
1: जी हाँ,
0: वह स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होता है। वार्ड पंच लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करता है। वह जनता के विश्वास का प्रतीक होता है और उसकी सक्रियता से गांव में तेजी से विकास संभव हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजनी, एक सफल वार्ड पंच में कई सारे गुण होते हैं, जैसे कि ईमानदारी के गुण होते हैं, नेतृत्व क्षमता के गुण होते हैं, सहानुभूति के गुण होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके अंदर और समाज सेवा की भावना होती है। इसलिए कहा गया है कि ईमानदारी और सेवा भाव वार्ड पंच की पहचान होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि गाँव के विकास में वार्ड पंच की बहुत ज्यादा भूमिका है। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, वो एक निर्णायक होता है। वो न केवल समस्याओं को समाधान करता है बल्कि गाँव को एक नई दिशा भी देता है। यदि वार्ड पंच अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाए अंजलि, तो गाँव का हर कोना विकास की रोशनी से जगमगा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है ऐसे वार्ड पंचों की जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करें, जो हर व्यक्ति की आवाज को सुने और उसे सम्मान दे। श्रोताओं, गांव का विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि सभी के सहयोग का परिणाम होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस सहयोग को दिशा देने वाला यदि कोई है तो वो वार्ड पंच ही है। इसलिए हम ऐसे वार्ड पंच को चुने और बने जो अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का सपना देखे ही नहीं बल्कि उसे साकार भी करें, क्योंकि सशक्त वार्ड पंच, सशक्त गांव, यही है भारत के विकास का सही पड़ाव।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांव के विकास में वार्ड पंच की भूमिका केवल एक प्रतिनिधि तक सीमित नहीं है बल्कि वह एक मार्गदर्शक, प्रेरक और परिवर्तनकारी नेतृत्व करता होता है। यदि वार्ड पंच अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाए तो वह गांव के हर कोने में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्रोता साथियों, वास्तविक विकास तभी संभव है जब योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि धरातल पर उतरे, और यह कार्य वार्ड पंच के माध्यम से ही संभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: वह लोगों की उम्मीदों और सरकार की नीतियों के बीच एक मजबूत कड़ी बनकर कार्य करता है। इसलिए श्रोता साथियों, यह आवश्यक है कि हम वार्ड पंच के महत्व को समझें, उनका सहयोग करें और उन्हें सशक्त बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: जागरूक और सक्रिय पंच ही गांव को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध बना सकता है और यही एक सशक्त भारत की पहचान होगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव का विकास केवल योजनाओं, बजट और नीतियों से संभव नहीं होता बल्कि उन लोगों की सोच, ईमानदारी और समर्पण पर भी निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
1: जो उन योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं, वार्ड पंच इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु बनकर खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब एक वार्ड पंच अपने कर्तव्यों को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम समझकर निभाते हैं, तब गांव में बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि हर गली, हर घर और हर दिल तक पहुंचता है।
0: बिल्कुल,
1: उसकी मेहनत से सूखी जमीन पर भी विकास के फूल खिलते हैं, टूटी सड़कों पर उम्मीदों के कदम बढ़ते हैं और अंधेरों में भी उजाले की किरण दिखाई देने लगती है।
0: जी हाँ,
1: आज आवश्यकता है श्रोताओं ऐसे वार्ड पंचों की जो पद के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए काम करें, जो अपनी पहचान सत्ता से नहीं बल्कि सेवा से बनाए, जो हर समस्या को अपनी समस्या समझे और हर समाधान को अपना कर्तव्य माने। याद रखिए श्रोता साथियों, गांव का हर छोटा परिवर्तन एक बड़े बदलाव की शुरुआत होता है और इस शुरुआत का सूत्रधार वार्ड पंच ही होता है अंजलि। यदि वो जागरूक, ईमानदार और दूरदर्शी होगा तो गांव केवल विकसित नहीं होगा बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और आदर्श भी बनेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि गांव के हर व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया से जोड़ना बहुत जरूरी है। उनकी पहल से छोटे छोटे बदलाव जैसे कि साफ सफाई, शिक्षा, जल संरक्षण और आपसी सहयोग धीरे धीरे बड़े परिवर्तन में बदल जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, असल में वार्ड पंच गांव की धड़कन को समझने वाला वह चेहरा है जो विकास को केवल योजनाओं में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में उतारता है। इसलिए यदि हर वार्ड पंच अपनी जिम्मेदारी को सेवा भाव से निभाए तो हर गांव अपने आप में एक आदर्श और विकसित गांव बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जहां सुविधा, समानता और खुशहाली तीनों का संतुलन देखने को हमें मिल पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अब समय भी आ गया है कि हम केवल अच्छे वार्ड पंच की सीमित ना करें श्रोताओ, बल्कि खुद भी जिम्मेदार नागरिक बनकर उनका साथ दें, क्योंकि जब जनता और प्रतिनिधि एक साथ मिलकर काम करते हैं तब विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव की असली ताकत उसकी एकता, जागरूकता और नेतृत्व में छिपी होती है, और जब ये नेतृत्व एक सच्चे वार्ड पंच के हाथों में होता है तो कोई भी बाधा विकास के रास्ते में टिक नहीं सकती।
0: जी हां,
1: इसलिए श्रोताओं चलो मिलकर एक संकल्प ले, न केवल अच्छा वार्ड पंच चुनेंगे बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जहां वार्ड पंच ईमानदार है, जागरूक है, वही गांव बनता है मजबूत और खुशहाल।
0: जी हां, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातचीत रही है कि किस तरीके से गांव के विकास में वार्ड पंच की भूमिका होती है, आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, पाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत में राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित जागृति बोल। आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बोन हूँ था का? अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: बच्चों के अधिकार।
2: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
3: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
4: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
3: वाग्धारा संस्था और वाग रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हंगरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, थोड़ा रुकना भी जरूरी है, खुद से मिलना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8। साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब बस भागते जा रहे हैं, काम के पीछे, सपनों के पीछे और कभी कभी दूसरों की उम्मीदों के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या हर वक्त भागना ही जरूरी है या कभी कभी रुकना भी उतना ही जरूरी है?

आज हम बात करेंगे जिंदगी में ठहराव क्यों जरूरी है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम का दस्तूर है कि शुरुआत में हम आपको गीत संगीत के साथ में मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी सबसे पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में ठहराव क्यों जरूरी है उसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम रुकना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि रुकना मतलब पीछे रह जाना। कभी कभी हमें डर लगता है कि लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें सिखाया गया है कि चलते रहो, रुको मत। लेकिन क्या हर समय चलते रहना ही सही है? तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि किसी ने क्या खूब ही कहा है कि कभी कभी रुकना हार नहीं खुद को समझने का मौका है। ठहराव का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ छोड़ दें या आप कमजोर हो जाएं। ठहराव का मतलब है थोड़ा रुकना, सांस लेना, खुद से पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों। ठहराव हमें यह समझने का मौका देता है कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हम सच में खुश हैं और क्या हम खुद को खो तो नहीं रहे। ठहराव साथियों रास्ता नहीं रोकता, वह रास्ता सही करता है। अब यही बात आती है कि ठहराव के आखिरकार फायदे क्या हो सकते हैं हमें। तो दोस्तों, जब हम ठहरते हैं तो खुद से जुड़ाव होता है, हम खुद को सुन पाते हैं। भागते भागते लिए जो फैसले हैं वो अक्सर गलत होते हैं, लेकिन ठहराव हमें सोचने का समय देता है। लगातार भागने से मन थक जाता है, ठहराव उसे आराम देता है। कई बार रुकने पर ही हमें नई राह दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों, रुक कर देखना सिखाता है हमें ठहराव कि हम कहाँ खड़े हैं। दोस्तों एक बात बताइए कि अगर हम बिना रुके चलते रहेंगे तो क्या होगा? हो सकता है दोस्तों कि हम बहुत आगे निकल जाएं, लेकिन गलत दिशा में। इसलिए कभी कभी ठहरना जरूरी है ताकि हम सही रास्ते पर चलें। अब बहुत सी बार ये सवाल आ जाता है कि हम ठहरे कैसे आखिरकार, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ठहरना पसंद ही नहीं होता है। वो निरंतर अपने जीवन में कुछ न कुछ अपने लक्ष्य को लेकर करते ही रहते हैं। तो ठहराव की आदत हमें डालनी है कि कुछ मिनट हम पूरे दिन में खुद के लिए निकालें, मोबाइल और भागदौड़ से थोड़ा दूर रहें, अपने मन की सुनें और खुद से सवाल करें। साथियों, जो खुद के साथ समय बिताता है वही खुद को समझ पाता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है दोस्तों, जहां सबसे तेज भागने वाला जीतता है। यह एक सफर है जिसे समझकर महसूस करके जीना होता है। इसलिए थोड़ा रुकिए, क्योंकि ठहराव ही आपको फिर से चलने की ताकत देता है। जिंदगी में ठहराव जरूरी है क्योंकि वहीं से असली समझ शुरू होती है। इसलिए साथियों कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से, रुक कर देखो, समझो खुद को, यही है जिंदगी का सच्चा रास्ता। तो बातें कार्यक्रम में दोस्तों हमारी बहुत अच्छी चल रही है कि जिंदगी में ठहराव क्यों जरूरी होता है और किस तरीके से हम अपने जीवन में खुद से कुछ सवाल कर सकते हैं। तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे यही बनी रहेंगी। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन का, तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दोस्त अंजलि के साथ में।

साथियों, चलते चलते थक गई दा है, शायद अब थोड़ा ठहरना बाकी है। जिंदगी कभी रुकी नहीं, हम ही हैं जो उसे बिना रुके जीते रहते हैं। सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह, काम, जिम्मेदारियां, उम्मीद, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन एक सवाल कहीं पीछे छूट जाता है, क्या मैं ठीक हूँ? हम रुकते क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर रुक गए तो सोचने लगेंगे, और अगर सोचने लगे तो शायद कुछ सच्चाइयां सामने आ जाएगी। दोस्तों, कहना चाहूंगी कि ठहराव हमारे जीवन का एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, हम क्या बनते जा रहे हैं। रुकना जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि जिंदगी को समझना है। जब हम रुकते हैं ना साथियों, तो सिर्फ कदम नहीं रुकते, विचार रुकते हैं, उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती है और मन थोड़ा शांत हो जाता है। ठहराव हमें सिखाता है कि हर दौड़ जरूरी नहीं होती, हर मंजिल हमारी नहीं होती, और हर जीत खुशी नहीं देती। आपको एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से मैं ये बात समझाना चाहूंगी साथियों, कि शहर की सड़कों पर हमेशा की तरह भागदौड़ थी। हॉर्न की आवाजें, भीड़, जल्दी में चलते लोग, सब कुछ तेजी से चल रहा था, और उसी भीड़ का एक हिस्सा था अंशुल। अंशुल की जिंदगी भी उसी शहर की तरह थी, हमेशा भागती हुई, हमेशा व्यस्त, हमेशा किसी अगले लक्ष्य की ओर। सुबह उठना, ऑफिस जाना, देर रात लौटना, और फिर अगले दिन वही दोहराव। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, पहचान, लेकिन जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी होता है वो नहीं था। क्या था बताऊं दोस्तों? सुकून नहीं था। एक दिन ऑफिस जाते समय अंशुल बहुत जल्दी में था, वह सड़क पार कर रहा था फोन पर बात करते हुए। तभी अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज आई, एक कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड के लिए दोस्तों सब कुछ थम गया, अंशुल वहीं खड़ा रह गया। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ वैसे ही चल रहा था, लोग भाग रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ रुक गया था। उसने पहली बार अपने आप से पूछा कि अगर अभी कुछ हो जाता तो क्या मैं सच में जी रहा था। उस दिन के बाद अंशुल बदलने लगा। वो पहले की तरह भागता तो था, लेकिन उसके अंदर सवाल भी दौड़ते थे, मैं क्यों इतना भाग रहा हूँ, किसके लिए, और क्या मैं खुश हूँ। एक रविवार वह बहुत दिनों बाद अपनी छत पर गया। सूरज ढल रहा था, आसमान हल्का नारंगी था। वह चुपचाप बैठ गया, ना फोन, ना कोई काम, बस खुद के साथ। उसे याद आया कि बचपन में वो पेंटिंग करता था, गाने सुनता था, और बिना किसी वजह के खुश हो जाता था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कब इतना दूर आ गया। उस दिन के बाद अंशुल ने सब कुछ नहीं बदला, लेकिन उसने रुकना शुरू किया। रोज 10 मिनट खुद के लिए, कभी शाम को टहलना, कभी पुराने शौक याद करना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है दोस्तों, जिंदगी महसूस करने का नाम है। जब उसने रुकना सीखा, तभी उसने जीना सीखा। कुछ महीने बाद साथियों, अंशुल वही इंसान था, वही नौकरी थी, वही शहर, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह भागता जरूर था, लेकिन बिना समझे नहीं। अब वह रुकता भी था खुद से मिलने के लिए। इसलिए दोस्तों, कहना चाहूंगी कि ठहराव जिंदगी को रोकता नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देता है। अगर हम कभी नहीं रुकेंगे तो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हम कहां जा रहे हैं। जिंदगी की दौड़ में जीतना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। कभी कभी एक छोटा सा ठहराव जिंदगी बदल देता है। तो साथियों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में आपको मनोरंजन करवाने का। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको एक प्यारी सी कहानी सुनवाई थी और उसके माध्यम से हम ये समझ पाए कि जिंदगी में ठहराव आखिरकार जरूरी क्यों है, क्योंकि हर कोई कोई न कोई चीज के लिए भाग रहा है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण चीज सुकून को भूलते जा रहे हैं, उसे खोते जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी रुक कर ही पता चलता है कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि हम धीरे चल रहे हैं, बल्कि यह है कि हम बिना सोचे दौड़ रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है ना साथियों कि हम बहुत आगे निकल चुके होते हैं लेकिन खुद से बहुत दूर। उस समय ठहराव ही हमें वापस लाता है हमारे पास, हमारी पहचान के पास। इसलिए साथियों कहना चाहूंगी कि ठहराव हमें खोने से बचाता है और खुद से मिलाता है। ठहराव कोई कमजोरी नहीं है, ये एक चुनाव है खुद को समझने का, खुद को संभालने का और फिर सही दिशा में आगे बढ़ने का। इसलिए अगली बार जब जिंदगी बहुत तेज लगे तो थोड़ा रुकिए, खुद के लिए, अपने मन के लिए, अपने अपनों के लिए और उस सच्चाई के लिए जो हमेशा आपके अंदर होती है। क्योंकि दोस्तों, ठहराव जीवन की गति को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने के लिए आवश्यक है। लगातार भागते हुए जिंदगी में यदि हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे तो संभव है कि हम बहुत दूर निकल जाएं, लेकिन यह तय नहीं कि वह दिशा सही होगी। ठहराव हमें विचारों को समझने, अपने निर्णयों का मूल्यांकन करने और अपने भीतर चल रही हलचल को शांत करने का अवसर देता है। यह वह पल होता है दोस्तों जहां हम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। इसी प्रक्रिया में हम यह समझ पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए कितना सार्थक है। जीवन में ठहराव इसलिए जरूरी है क्योंकि वही हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। कभी कभी रुक जाना ही आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। यह हमें रुककर सोचने, समझने, फिर सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में होने वाली बातचीत आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का आपको पता बताना चाहूंगी, ताकि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि साथियों हम जब भी कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है।
0: जी,
1: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों के सद्भावना के विचारों से हमारी चेतना शुद्ध होती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों हमारा जो जीवन है केवल शरीर से नहीं चलता बल्कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और व्यवहार ही उसके वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: मनीषा, जिस प्रकार से स्वच्छ जल में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार शुद्ध चेतना में मानवता, प्रेम, करुणा और सद्भावना का प्रकाश भी स्पष्ट रूप से झलकता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सद्भावना के विचारों से हमारी ही चेतना शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता बल्कि उसके विचार, भावनाएं और संस्कार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं।
1: जी हाँ,
0: जिस प्रकार श्रोता साथियों स्वच्छ जल शरीर को स्वस्थ रखता है उसी प्रकार अच्छे विचार मन को और आत्मा को शुद्ध बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे विचारों का प्रभाव केवल हमारे व्यवहार तक सीमित नहीं रहता साथियों, बल्कि यह वह हमारे व्यक्तित्व, समाज और पूरे वातावरण को भी प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जब मनुष्य के भीतर सद्भावना, प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं तब उसकी चेतना शुद्ध होती है। साथी श्रोता साथियों, बताना चाहेंगे कि सद्भावना का अर्थ ही दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, उनके सुख दुख को समझना और बिना किसी स्वार्थ के उनके हित पे काम करना। आज के समय में कशिश, हम देखते हैं कि ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ श्रोता साथियों सद्भावना का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सद्भावना केवल समाज को ही नहीं जोड़ती साथियों, बल्कि मनुष्य के भीतर भी अशांति को समाप्त करती है, अच्छे विचारों को हमारे मन में लाती है और हमारे मन को हल्का करती है और साथ ही श्रोता साथियों हमें आत्मिक शांति भी प्रदान करती है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सद्भावना के विचार ही हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। जब दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तब वास्तव में वह व्यक्ति स्वयं के लिए श्रेष्ठ और पवित्र बन जाता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा, क्योंकि हम देखते हैं कि आज का समय भौतिक प्रगति का समय है, लेकिन इसके साथ ही साथ श्रोता साथियों हमारे अंदर तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ और असहिष्णुता भी बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे दौर में सद्भावना केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है बल्कि मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।
0: जी जी,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि सद्भावना का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छा सोचना।
0: बिल्कुल,
1: उनके सुख दुख को समझना और मन में द्वेष न रखना।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, सभी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना भी सद्भावना की पहचान है। जब मनुष्य अपने भीतर शुभ विचारों को स्थान देता है तब वह केवल समाज ही नहीं बदलता बल्कि उसकी जो अपनी चेतना है वो भी इससे निर्मल होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: मन की शुद्धता बाहरी दिखावे से नहीं आती दोस्तों, बल्कि भीतर के विचारों से जन्म लेती है। हम देखते हैं कि जिस मन में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और अपनापन होता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि चेतना मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति है साथियों जो उसे सही और गलत का ज्ञान कराती है। यह चेतना हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: बिल्कुल,
0: मनुष्य का बाहरी व्यवहार श्रोता साथियों उसकी आंतरिक चेतना का प्रतिबिंब होता है। यदि मन में बुरे विचार, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा

0: हो साथियों, तो चेतना अशुद्ध हो जाती है और शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति हमेशा तनाव अशांति और दुख से घिरा रहता है कशिश।
1: बिल्कुल।
0: इसके विपरीत यदि मन में प्रेम दया सद्भावना की चेतना हो श्रोता साथियों, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है।
1: जी हाँ।
0: किसी का बुरा नहीं सोचता है और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। उसकी उपस्थिति से ही आसपास का वातावरण शांत और सुखद बन जाता है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ये संदेश दिया था कि जैसा चिंतन वैसा जीवन।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, यदि मन में घृणा होगी तो व्यवहार में कटुता जरूर आएगी।
0: बिल्कुल।
1: और यदि मन में सद्भावना होगी तो जीवन में शांति और संतुलन अपने आप ही प्रकट होगा।
0: जी हाँ,
1: इसलिए कहा जाता है मनीषा कि सद्भावना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए भी जरूरी होती है।
0: जी हाँ,
1: आज परिवारों में दूरी बढ़ रही है, समाज में मतभेद गहराते जा रहे हैं और लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से कटने लगे हैं।
0: जी हाँ,
1: ऐसे समय में दोस्तों सद्भावना का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है, रिश्तों को जोड़ती है और समाज में विश्वास का वातावरण तैयार करती है।
0: जी हाँ,
1: हम कह सकते हैं कि सद्भावना वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ सकती है और बिखरे हुए समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है।
0: जी हाँ कशिश, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य का मन उसके विचारों से प्रभावित होता है। यदि हम हर समय दूसरों की बुरा सोचेंगे श्रोता साथियों, तो हमारे मन में अशांति रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: नकारात्मक विचार, मन में तनाव, चिंता और क्रोध बढ़ते जाएंगे। इसके विपरीत श्रोता साथियों, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा मन हल्का और प्रसन्न रहता है।
1: जी,
0: सद्भावना हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है साथियों। उदाहरण के लिए कशिश, अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि यदि कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है तो हमारे मन में उसके प्रति प्रेम और सम्मान उत्पन्न होता है।
1: बिल्कुल।
0: उसी प्रकार जब हम दूसरों की मदद करते हैं श्रोता साथियों, तब हमारे भीतर आत्मसंतोष और खुशी का अनुभव होता है। यही आत्मसंतोष श्रोता साथियों मानसिक शांति प्रदान करता है। सद्भावना मनुष्य को तनाव मुक्त बनाती है। जो व्यक्ति सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है उसके जीवन में शत्रुता कम हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और मित्रता बढ़ती है, उसका जीवन सरल और आनंदमय बन जाता है।
1: जी हाँ, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी कर रहे हैं,
0: जी
1: ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही चलने वाली हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्यों ना अभी साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाए पहले।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि सद्भावना के विचारों और हमारी चेतना शुद्धि को लेकर हम बातचीत कर रहे थे साथियों,
1: जी हाँ,
0: यही आपको बताना चाहेंगे कि मनुष्य की चेतना उसके विचारों का एक आईना होती है। यदि विचार सकारात्मक है मनीषा तो उज्जवल होंगे, और यदि विचार नकारात्मक है तो अशांति बनी रहेगी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए दोस्तों सद्भावना का सीधा संबंध आत्म शुद्धि से माना जाता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तब हमारे भीतर भी शांति, संतोष और आत्मविश्वास का विकास होता है।
1: जी हाँ
0: मनीषा, इसी कारण है कि महान संतों और महापुरुषों ने सदैव प्रेम, दया और सद्भावना का संदेश दिया है। क्योंकि सद्भावना केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, जरूरतमंद की सहायता करना, किसी की गलत को क्षमा कर देना, दूसरों की सफलता से प्रसन्न होना, दोस्तों ये सभी सद्भावना के ही रूप हैं। ऐसे कार्य न केवल समाज को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि सद्भावना केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का कार्य भी करती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस समाज में श्रोता साथियों लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं वहाँ शांति और विकास होता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में सद्भावना का विशेष महत्व है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा और संस्कृतियाँ होने के बावजूद लोग श्रोता साथियों मिलजुल कर रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसका मुख्य कारण है श्रोता साथियों आपसी भाईचारा और सद्भावना। श्रोता साथियों, जब समाज में सद्भावना बढ़ती है तब शांति, धर्म और भाषा के आधार पर होने वाले मतभेद कम हो जाते हैं।
0: जी,
1: लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। इससे समाज में सहयोग और एकता की भावना भी मजबूत होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों समाज में सद्भावना समाप्त तो हो जाए तो नफरत, हिंसा और संघर्ष बढ़ने लगेंगे। इसलिए समाज की शांति और प्रगति के लिए सद्भावना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि नकारात्मक विचार मनुष्य की चेतना को दूषित कर देते हैं। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, अहंकार जैसे भाव श्रोता साथियों मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है साथियों वह कभी स्वयं खुश नहीं रह सकता। उसकी सोच हमेशा अशांत रहती है, धीरे धीरे उसका व्यवहार भी कठोर हो जाता है और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। कशिश, श्रोता साथियों नकारात्मक सोच का प्रभाव केवल मानसिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार तनाव और क्रोध से व्यक्ति अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसीलिए कशिश श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन में सकारात्मक सोच और सद्भावनाओं को अपनाना आवश्यक है। जब हमारे मन में श्रोता साथियों अच्छे विचार आते हैं तब चेतना स्वयं ही शुद्ध होने लगती है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि सद्भावना केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है। जैसे कि किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, जैसा कि हमने पहले भी बताया। और सद्भावना का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि मनुष्य को अहंकार से ये दूर करती है।
1: जी हाँ
0: मनीषा, जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तब उसका मन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के हित की भी चिंता करता है तो उसकी चेतना विस्तृत होने लगती है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, यही विस्तार मनुष्य को मानवता की ओर ले जाता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में सद्भावना का महत्व बहुत अधिक है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ही है दोस्तों कि पूरी धरती एक परिवार है।
1: जी हाँ,
0: और यह भावना तभी संभव है जब मनुष्य के भीतर सद्भावना हो। देख सकते हैं कि यदि हर व्यक्ति केवल अपने हित की सोचने लगे तो समाज में संघर्ष बढ़ेंगे, लेकिन यदि लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखेंगे तो समाज में शांति और सौहार्द बना रहेगा।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के युवा पर आधुनिक जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया और भौतिक सुखों की दौड़ में कई बार युवा के मन में तनाव और असंतोष बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में सद्भावना युवाओं को सही दिशा दे सकती है साथियों। यदि युवा दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, ईर्ष्या न करे और सहयोग की भावना रखे तो उनका जीवन अधिक सुखद बन सकता है।
0: जी,
1: सद्भावना युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करती है। इससे श्रोता साथियों सामाजिक सेवा, मानवता और भाईचारे की भावनाएं भी विकसित होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज देश और समाज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए काम करे जो सबके लिए अच्छा सोचे। यही सोच समाज को आगे बढ़ाती है। साथ ही कशिश हम देखते हैं कि परिवार में प्रेम और विश्वास का आधार होता है। यदि परिवार के सदस्य के बीच सद्भावना हो तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। श्रोता साथियों, जब परिवार के लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तब परिवार मजबूत बनता है। इसके विपरीत कशिश हम देखते हैं कि यदि परिवार में क्रोध, अहंकार और दुर्भाग्य जैसे गुण विकसित हो जाए तो रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए हाँ। श्रोता साथियों, परिवार में सद्भावना रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे भी अपने श्रोता साथियों, बच्चे भी अपने परिवार से ही अच्छे संस्कार सीखते हैं। यदि घर का वातावरण प्रेम पूर्वक होगा तो बच्चों की सोच भी सकारात्मक बनेगी।
0: जी हाँ मनीषा, इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों, तो हम देखते हैं कि आज दुनिया में अहिंसा, हिंसा और विवादों का मुख्य कारण मनुष्य के भीतर बढ़ती नकारात्मकता है।
1: जी हाँ,
0: यदि मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध कर ले तो आधी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। मनीषा
1: जी बिल्कुल,
0: ऐसे में सद्भावना का मतलब ये नहीं है कि हम हर परिस्थिति में खुद को कमजोर समझे, बल्कि इसका मतलब ये दोस्तों कि हम अपने भीतर कटुता को स्थान न दें। देखते हैं कि सद्भावना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है और मजबूत करता है। जिन परिवारों में लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम रखते हैं मनीषा, वहाँ शांति बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: और वहीं जहाँ कटुता और स्वार्थ होता है, वहाँ तनाव और टूटन बढ़ जाती है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से सद्भावना के विचार से हमारी चेतना शुद्ध होती है, इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें ऐसे ही आगे जारी रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

टच कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा।

0: आइए दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, सद्भावना के विचारों से हमारी चेतना शुद्ध होती है को लेकर। कशिश, हम देखते हैं कि परिवार प्रेम और विश्वास का आधार होते हैं। यदि परिवार के सदस्य के बीच सद्भावना हो तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सद्भावना मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर गुण है। यह केवल दूसरों के लिए ही लाभकारी नहीं होती है, बल्कि सबसे अधिक लाभ स्वयं के लिए होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं साथियों, तब हमारे मन की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हमारी चेतना शुद्ध होती है।
1: जी जी।
0: साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के तनावपूर्ण और स्वार्थपूर्वक वातावरण में सद्भावना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: यदि श्रोता साथियों, हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, दया और सहयोग की भावनाओं को विकसित करे तो समाज में शांति और भाईचारा स्थापित होता है।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, हमें समझना चाहिए कि दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सद्भावना से भरा हुआ मन श्रोता साथियों अच्छे सुख और शांति का अनुभव कराता है। साथ ही श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन को सद्भावनाओं को अपना कर अपनी चेतना को शुद्ध और जीवन को सार्थक बनाना है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि सद्भावना का मतलब ये भी है दोस्तों कि हम दूसरों की पीड़ा को समझें।
0: जी
1: जब
0: जी।
1: किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और कोई उसका साथ देता है तब उसे मानसिक शक्ति भी मिलती है। इसलिए मनीषा, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे शब्द भी किसी दवा से कम नहीं होते।
0: जी बिल्कुल।
1: कई बार साथियों, केवल एक मुस्कान या सहानुभूति भरा व्यवहार ही किसी के जीवन में नई आशा जगा सकता है। हम देखते हैं कि चेतना की शुद्धता केवल पूजा पाठ से नहीं आती, बल्कि मन में द्वेष और अहंकार भरा हो तो बाहरी धार्मिक कर्मकांड भी अधूरे रह जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, वास्तविक आध्यात्मिकता वही है जिसमें मनुष्य के भीतर करुणा और सद्भावना हो। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सभी धर्म प्रेम और मानवता का संदेश देते हैं।
0: जी हाँ,
1: प्रकृति भी हमें दोस्तों सद्भावना का पाठ पढ़ाती है। सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है।
0: बिल्कुल।
1: वृक्ष बिना स्वार्थ के फल देते हैं और नदियां सभी की प्यास बुझाती हैं। यदि दोस्तों प्रकृति केवल अपने हित के बारे में सोचती तो जीवन संभव नहीं होता।
0: जी हाँ।
1: ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर उदारता और सद्भावना का विकास करना चाहिए। मनीषा
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और कार्य करने तक सीमित नहीं है। उसके जीवन की वास्तविक पहचान उसके विचार और व्यवहारों से होती है।
1: बिल्कुल।
0: इंसान श्रोता साथियों, जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि उसके मन में प्रेम, दया, सहयोग और मानवता की भाव है तो उसका व्यक्तित्व उज्जवल बनता है। यदि श्रोता साथियों मन में घृणा, क्रोध, ईर्ष्या से भरी हो तो जीवन अशांत और तनावपूर्ण हो जाता है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सद्भावना वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से सुंदर बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: यह केवल दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने का नाम नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता का प्रतीक है। जब मनुष्य दूसरों के लिए अच्छा सोचता है कशिश, उसकी भलाई चाहता है और बिना किसी स्वार्थ की सहायता करता है, तब उसकी चेतना भी निर्मल होती है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि आज का समय तेज और प्रतिस्पर्धा और भौतिकवादी का समय है। लोग सफलता पाने की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। इस कारण श्रोता साथियों, कई बार मन में द्वेष और असंतोष जन्म लेने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में सद्भावना की भावना है जो श्रोता साथियों मनुष्य को सही दिशा दिखाती है और उसे मानवता और शांति का मार्ग बताती है।
1: जी आपने सही कहा मनीषा। अगर बात करें तो चेतना की शुद्धता केवल पूजा पाठ से नहीं आती। यदि मन में द्वेष और अहंकार भरा हो तो दोस्तों बाहरी धार्मिक कर्मकांड भी अधूरे रह जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि सद्भावना मनुष्य को आंतरिक शक्ति देती है।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखता है मनीषा, वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है।
0: बिल्कुल कशिश।
1: उसकी भीतर धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है और यही गुणों से जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि वर्तमान के समय में तनाव और अवसाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका कारण ये भी है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं।
0: जी जी।
1: यदि समाज में सद्भावना का वातावरण बने मनीषा, तो जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं वे अकेलापन को कम महसूस करेंगे। आपसी सहयोग और अपनापन मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा, क्योंकि दोस्तों सद्भावना का सबसे सुंदर रूप क्षमा होता है।
0: जी हाँ।
1: जब हम किसी की गलती को माफ करते हैं तब वास्तव में हम स्वयं को क्रोध और तनाव से मुक्त करते हैं।
0: जी
1: साथियों, क्षमा करना जरूरी नहीं है कमजोरी नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति का एक प्रतीक है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है उसका मन अधिक शांत रहता है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसके कर्मों की दिशा को तय करते हैं। हर कार्य पहले मन में विचार, श्रोता साथियों विचार के रूप में जन्म लेता है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे और हमें परिणाम भी अच्छा मिलेगा। अच्छे विचार श्रोता साथियों मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षण बनाते हैं। ऐसे लोग हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। उसके आसपास का वातावरण भी कशिश शांत और प्रेरणादायक बन जाता है।
1: जी जी।
0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि इसके विपरीत नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है और दूसरों की सफलताएं देखकर परेशान होने लगता है। धीरे धीरे उसका मन है वो अशांत हो जाता है और वो दुखी रहने लगता है।
1: जी जी।
0: इसलिए श्रोता साथियों हमारे लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने विचारों को सकारात्मक बनाए, सद्भावना के विचारों को अपने मन में अपनाए और अपने मन को शांति दे। ऐसे जीवन में श्रोता साथियों संतुलन बना रहता है और साथ ही श्रोता साथियों हम जीवन में सकारात्मक निर्णय ले पाते हैं और हमारा जीवन भी अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों कहना चाहूंगी कि चेतना मनुष्य की आंतरिक जागरूकता है। यदि उसे सही और गलत का अनुभव कराती है, जब चेतना शुद्ध होती है साथियों तब व्यक्ति का व्यवहार भी श्रेष्ठ बनता है। शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। वह अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, करुणा को महत्व देता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में कशिश व्यक्ति के मन में संतोष रहता है और वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। साथ ही श्रोता साथियों चेतना की शुद्धि केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यदि मन में द्वेष और अहंकार भरा हो तो बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं रहता। वास्तविक शुद्धि तो अच्छे विचारों और श्रेष्ठ कर्मों से होती है। सद्भावना मनुष्य के मन को स्वार्थ से मुक्त करती है। यह उसे दूसरों के सुख को समझने की क्षमता देती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी चेतना से और मनुष्य का विकास होता है।
1: जी हाँ, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, कुछ छोटी मोटी बातें और भी बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसे कि बातें ढेर सारी हो चुकी है, इसी बीच आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि सामुदायिक जीवन में सद्भावना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि गांव, मोहल्ले और समाज तभी मजबूत बनते हैं जब लोग मनुष्य एक दूसरे की सहायता करें।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, सामुदायिक रेडियो जैसे माध्यम भी समाज में सकारात्मक सोच फैलाने का कार्य करते हैं, जैसा कि हम कर ही रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: और रेडियो के माध्यम से दोस्तों ऐसी ढेर सारी बातें हम आपको बताते हैं, ताकि हमारे मन में जागरूकता और अपनापन बढ़ता रहे।
1: बिल्कुल
0: मनीषा, अगर बात करें हमारे युवा साथियों की, तो आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखना।
1: जी बिल्कुल कशिश,
0: दोस्तों सफलता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि सफलता के साथ विनम्रता और सद्भावना न हो तो जीवन अधूरा रह जाता है।
1: जी हाँ,
0: एक सफल व्यक्ति वही है जो दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़े, क्योंकि सद्भावना का प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, मीठे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, जबकि जो कटु शब्द है वो दिलों में दूरी पैदा कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बोलने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हमारे शब्द किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मधुर वाणी भी सद्भावना का ही एक रूप है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि भौतिक सुख केवल कुछ समय के लिए खुशी देते हैं, लेकिन मन की शांति स्थायी आनंद प्रदान करती है। साथियों
0: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों, जब मनुष्य की सहायता करता है कोई या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनता है, तब उसे जो आत्मसंतोष मिलता है वही सच्चा सुख होता है।
0: बिल्कुल,
1: सद्भावना से उत्पन्न यह आनंद किसी धन संपत्ति से कम नहीं है श्रोता साथियों, और इसे आसानी से खरीदा नहीं जा सकता। यह केवल अच्छे विचारों और श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होता है। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि सद्भावना मनुष्य के जीवन को उज्जवल बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है।
0: बिल्कुल,
1: यह न केवल समाज में प्रेम और शांति स्थापित करती है, बल्कि श्रोता साथियों हमारी चेतना को भी शुद्ध बनाती है। अच्छे विचार मनुष्य को मान बनाते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं कशिश, तब वास्तव में हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। यही चेतना सच्ची शुद्धि है साथियों। कशिश, हम देखते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सद्भावनाओं को स्थान दे। यदि हम अपने व्यवहार में प्रेम, सहयोग और करुणाओं को अपनाएंगे तो हमारा जीवन अधिक सुख और सार्थक बन जाएगा। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और मानवता के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों सद्भावना से ही मनुष्य का वास्तविक विकास संभव है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको बताएं तो हमारे बुजुर्ग सदैव कहते थे कि मन साफ रहेगा तो जीवन भी सुखी रहेगा। वास्तव में दोस्तों, मन की शुद्धता ही सच्चा सुख देती है। धन, पद और प्रसिद्धि होने के बावजूद भी यदि मन अशांत है मनीषा, तो जीवन में आनंद नहीं रह सकता।
1: जी
0: लेकिन वही जिसके मन में संतोष और सद्भावना है, वह साधारण जीवन में भी खुश रह सकता है। साथियों, सद्भावना का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि ये मनुष्य को भीतर से हल्का बना देती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही उत्पन्न होने लगती है।
1: जी हाँ,
0: और ये ऊर्जा हमारे व्यवहार, स्वास्थ्य और संबंधों में दिखाई देती है। साथियों, हम देखते हैं मनीषा की आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल दूसरों से सद्भावनाओं की उपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं इसकी शुरुआत करें। यदि हर व्यक्ति अपने परिवार, पड़ोस और समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए, तो पूरा समाज बदल सकता है। परिवर्तन हमेशा एक छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत करता है साथियों।
1: जी बिल्कुल कशिश, अंत में हमारे श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि आज के समय में जब तनाव, प्रतिस्पर्धा और आपसी दूरियां बढ़ रही हैं, तब श्रोता साथियों सद्भावनाओं की आवश्यकता पहले से अधिक हो गई है।
0: बिल्कुल,
1: यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दे, तो परिवार, समाज और राष्ट्र में सुख और शांति का वातावरण बना रह सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे विचारों को स्थान देना है श्रोता साथियों, क्योंकि सद्भावना के विचार जो है वो केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारी चेतनाओं को शुद्ध और प्रकाशित करते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: जी हाँ,
0: और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ अब यहीं समाप्त तो होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागा रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

सेहत नो राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है दोस्तों 9460051234। तो साथियों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पंटपुर से है। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोले ना मिलो हमसे। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे जाकिर मुलानी, सोम्या सुबान, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी, बानू मिलानी जी, बादिशाह जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे साथियों हमारे इसी गीत के साथ में। पंटनपुर सिटी से है प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। जिला खरगोना मध्य प्रदेश से है डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समराज, आर्यन, बेबी, आरोही, एशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे साथियों। जिला भागपत से ही आसिर अली खान, मोमित नाच, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और आपके अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच जिला भागपत से है। फिल्म का नाम है अर्पण। गीत के बोले दोस्तों, लिखने वाले ने लिख डाली। इस गीत के साथ चुना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारतीय, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितुन जी, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सोनम देवी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, हमारे इसी गीत के साथ में आरी नगर कोक्का बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरसी जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिन जंगेल जी, सुकरी कला से अमित जंगेल, कुशल जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों, कश्मीर से पीर ज्यादा मिराज उद्दीन, नजमा उद्दीन, केसर उद्दीन जी और भी जुड़ रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र से है संतोष जी, सुनैना जी, सुकन्या जी, सविता जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच मंजू का टीला से ही। फिल्म का नाम है आशा, गीत के बोले धक धक से धड़कना। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संतना एमपी से है उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, हरदोई नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नाइबा, लड्डू जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों हरियाणा से है जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरुपति सिंह, लवप्रति जी, कमरजीत जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत्ता शिवाश, श्रीमती करुणा शिवाश, आयुष शिवाश, विवेक शिवाश, बेबी आयुष शिवाश, बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिराज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच गश डुंडवारा से है। फिल्म का नाम है राजा। गीत के बोले साथियों झुकी झुकी तेरी नज़र कमाल कर गई। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, आनंद खान, फैनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में महाराष्ट्र से है शंकरलाल जयसवाल, गणेशवाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जी, कुमारी दुर्गेश्वरी जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों मस्तानापुरा से अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलोचना भगत जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी आपकी फरमाइश में। तो दोस्तों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच जिला रायगढ़ से है। फिल्म का नाम है करण अर्जुन, गीत के बोले दोस्तों जाती हूँ मैं। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी जी, उत्कर्ष चौहान जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं हमारे इसी गीत को। जिला सिरसा से है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि, निजा जी, सप्रिला जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। सहारनपुर से जैन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलियस डिकेस्टो जी। भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मन चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच कुरवाली से ही। फिल्म का नाम है ऐसा प्यार कहाँ। गीत के बोले दोस्तों चल मुसाफिर चल। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे अनिल कुमार वर्मा, माया देवी जी, राहुल कुमार, नितिन कुमार जी, सोनम वर्मा जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। नेहरू चौक पौंडन से है डॉक्टर सूरज यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रशांता यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव। जलाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओमनाथ यादव, सुभाष यादव, चंद्र यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेरा जहां। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच कुम्भार गली श्रीरामपुर से है। फिल्म का नाम है मृत्युदंड। गीत के बोले कह दो ना एक बार सजना। इस गीत के बाद जुड़ना चाह रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेत दले, जीविका दले, सानिका दले जी, पुनावले से अजय सोने, करिश्मा, अविका, विशाखा जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों भवानी से है कृष्णा मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेरा, कुनहाल मेरा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जोधपुर राजस्थान से ही। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल है पहली पहली बार मोहब्बत की है। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, हिमांश जी, और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सोनू कुमार, अर्चना कुमार जी, पुनावले से अजय सोने, करिश्मा, अविका, साइना जी, और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिंगलानी, बबीता जी, सुभाष योगी और बबलू डब्लू जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है ग्राम पंचायत कालेगांव जाखराबाद से। फिल्म का नाम है पाप की दुनिया, गीत के बोल हैं मैं तेरा तोता तू मेरी नैना। इस गीत की फरमाइश करता है सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारिश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत की अनुरोध करता है सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है पथरूट से विजय अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। पटेल नगर महलोत से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गणदीप झंझोरिया, अर्जु झंझोरिया, गुड्डू जी। पटिया कला दुर्ग से जुड़ रहे हैं संजय, सुजिता, शशंक, सीमा जी शाहू। आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोले हैं मैं तेरा तोता तू मेरी नैना। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर से। फिल्म का नाम है बेवफा, गीत की बोल है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। इस गीत की फरमाइश करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएश निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मक्कापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगली, राजकुमार खर्ची, आशीष मेहकर जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ना चाह रहे पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू जी सिक्का। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिटू, पीपी कुतलेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरशरत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। तब तक आप सभी बने रहिएगा आपके अपने सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है बाबुल, गीत के बोल हैं मिलते ही आके। इस गीत की फरमाइश करते हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन, मीनू काना, हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सरगुजा से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और डोमिन परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं रमेश कुमार शाहू, मीरा देवी, गंगा देवी, मिश्री जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम नौरीन जी, प्रकाशवीर राजपूत। बालोद से जुड़ना चाह रहे हैं कमलेश जयपुरिया, चंद्रनगर से जुड़ रहे हैं रजनी सिंह चौहान, पिंकी चौहान, दुर्गा कुमारी जी। जेल रोड रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं लालचंद मिश्रा, कुमकुम जी मिश्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रत्येश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवत देशमुख, कुमारी सानवी जी देशमुख। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडुड़वारा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जरूर वरूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदी, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानेरी। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, अरबी खेड़ा, जीवन सिंह खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत की फरमाइश करता है नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांती, दीप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, बीबी वामिका वानी जी थांती। चचेरे छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशीष शेख, नाजिया नाशीष, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमीद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल जी मुजावर, जुमीद भी मुजावर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है एक मुलाकात जरूरी है सनम।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेले वाला उत्तराखंड से। फिल्म का नाम है कन्यादान, गीत के बोल हैं लिखे जो खत तुझे। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आले, आयन बाबू और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे। बुलंदखंड सी मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, सरफुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अरजान अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिहार से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, अनामिका जी शर्मा। इस गीत की अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश से दीपक साक्ष, दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम जी शाक्य। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सोमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। इस गीत की अनुरोध करता है टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युधव जी। इस गीत की अनुरोध करता है पुराना तालाब डुमराव से वल्लेउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी। सरगुजा से जुड़ना चाह रहे विनोद थापा, पूजा रानी, विजय थापा। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं जानवी डोमेन, यामिनी, रोहित डोम। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार, फर्जुरानी, प्रभा बेलदार। रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं उमा राज, जगदीश राज। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कलनर से सुधाकर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा जी शर्मा, गोद्रा सुनीता शर्मा, अनिता जैन, सुनीता, हरिपाल जी, मीनाक्षी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं लिखे जो खत तुझे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा उत्तर प्रदेश से। गीत के बोल ही मैंने पूछा चांद से। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर खिल्लो परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला सैनी, अनुश्री जी सैनी। पारा से जुड़ना चाह रहे हैं मीरा, सिमरन, योगेश कुमार राजवाड़ी। इस गीत की अनुरोध करता है दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिहार स्टेट डुमराव से राज एडी अंसारी, नरसिंह अंसारी, वल्लेउल्ला जी अंसारी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं अजीम वक्कर जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, सृष्टि, बन्नी, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। इस गीत के अनुरोध करता है आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं सुजीता चौरासिया, पंकज चौरासिया, दिया चौरासिया, पीहू चौरासिया। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं आगरा से श्रीमती सरिता, सुमित, वीर चौरासिया। दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया, वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए।

उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी, राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास, हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, वो अकेले रहकर न तो अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से जी सकता है और न ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के इस आधुनिक युग में जहाँ भौतिक सुविधाओं की भरमार है कशिश, वही मनुष्य के भीतर एक अजीब सा खालीपन और अकेलेपन की भावना बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: इसका मुख्य कारण श्रोता साथियों सामूहिकता से दूर होना है। वास्तव में सच्ची खुशी और संतोष सामूहिक जीवन सहयोग और सहभागिता में निहित है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हम हमारे दोस्तों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत में पहले गीत सुन लिया जाए।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, जहां साथियों हम बात करते हैं जीवन की सच्चाइयों की और उन मूल्यों की जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जैसा कि आज के कार्यक्रम का विषय बेहद खास है दोस्तों, बात कर रहे हैं सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खालीपन क्यों महसूस करते हैं, और जब हम जागृति जी अपने दोस्तों परिवारों या समाज के साथ होते हैं तो छोटी छोटी खुशियां भी हमें बड़ी लगने लगती हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज दोस्तों इन्हीं दो पहलुओं को लेकर हम बात करेंगे कि क्यों असली खुशी अकेलेपन में नहीं है बल्कि साथ मिलकर जीने में छुपी हुई होती है। हम बात करें अगर सामूहिकता की, तो दोस्तों सामूहिकता का सीधा मतलब होता है मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ जुड़ना और एक टीम या समाज के रूप में आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल,
0: यह सिर्फ एक शब्द नहीं है जागृति जी, बल्कि हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक भावना है जो हमें मैं से हम की ओर ले जाती है। हम देखते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर कोई अपने अपने लक्ष्य में व्यस्त है, वहां सामूहिकता की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है साथियों, और हमारी खुशी दूसरों से जुड़ने में ही है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि सामूहिकता का अर्थ केवल एक साथ रहना नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना, सुख दुख में साथ देना और मिलकर जीवन को सार्थक बनाना है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम परिवार, समाज या किसी समूह के साथ जुड़ते हैं तो हमें अपनापन, सुरक्षा और आत्मीयता का अनुभव होता है। ये अनुभव ही वास्तविक प्रसन्नता का आधार बनता है।
0: जी,
1: प्राचीन भारतीय संस्कृति में सामूहिकता को विशेष महत्व दिया गया है। हम देखते हैं कशिश की वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें सिखाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है।
0: बिल्कुल,
1: पहले के समय में संयुक्त परिवारों की परंपरा थी जहां सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे।
0: जी हाँ,
1: घर के छोटे बड़े निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे और हर व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान किया जाता था। इससे न केवल पारिवारिक संबंध मजबूत होते थे कशिश, बल्कि जीवन में संतोष और खुशी भी बनी रहती थी।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओ, आज के दौर में एकल परिवारों का चलन बढ़ गया है, ये हम सभी जानते हैं। लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचता है, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि मानसिक तनाव, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्या बढ़ती जा रही कशिश।
0: बिल्कुल,
1: ये स्पष्ट संकेत है श्रोताओं की भौतिक प्रगति के बावजूद हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: यदि हम पुनः सामूहिकता की ओर लौटें तो इन समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के युवा साथी अक्सर ये कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से वह खुद ही अकेलापन महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, अकेले रहने से उनमें तनाव बढ़ता है, सोच नकारात्मक हो जाती है और आत्मविश्वास भी उनका कम होता है। वहीं जब वे समूह में रहते हैं तो सामूहिकता उन्हें भावनात्मक सहारा देती है, जीवन में संतुलन लाती है साथियों, और हमें मजबूत भी बनाती है। हम कह सकते हैं कि असली खुशियाँ हमें तब मिलती है जब हम अपने अनुभव, अपने दर्द और अपनी खुशियों को किसी के साथ बांटते हैं जागृति जी।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि परिवार में सामूहिकता का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि परिवार वह पहला स्थान है जहाँ हम सामूहिकता सीखते हैं साथियों। हम देखते हैं कि जब हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, खुशियों और दुखों को साझा करते हैं साथियों, तो हमारे रिश्ते इससे और भी ज्यादा मजबूत होते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ समय बिताना काफी कम हो चुका है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ऐसे में हमारे युवाओं को ये याद रखना है कि सच्ची खुशी घर से ही शुरू होती है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है और हमने करी भी थी कि सामूहिकता में निहित है वास्तविक प्रसन्नता को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे कि कशिश, ग्रामीण जीवन में आज भी सामूहिकता के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, त्योहारों को मिलकर मनाते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये सामूहिक भावना ही गांव की सबसे बड़ी ताकत है श्रोताओं। इसके विपरीत शहरों में लोग एक ही इमारत में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान रहते हैं, जिससे सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों आपसे कि सामूहिकता केवल सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब कशिश हम समूह में कार्य करते हैं तो हमें कई विचारों और दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है। इससे हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है और हम अधिक रचनात्मक बनते हैं।
1: जी
0: हाँ। साथ ही टीम वर्क के माध्यम से हम अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारी जैसे गुण भी सीखते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों और समाज में सामूहिकता के महत्व को लेकर, तो दोस्त जैसा कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब साथियों हम दोस्तों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं या फिर मुश्किल समय में उनका साथ पाते हैं तो जीवन हमें आसान लगने लगता है। हम देखते हैं कि समाज में भी सहयोग, सहानुभूति और सेवा, ये सभी सामूहिकता के ही रूप होते हैं। अगर दोस्तों समाज में हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे तो समाज धीरे धीरे टूट जाएगा जागृति जी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो इससे समाज मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में सामूहिकता के महत्व को समझें, उसे अपनाने का प्रयास करें। हमें अपने परिवार और समाज के साथ समय बिताना होगा, उनके साथ संवाद करना होगा और उनके सुख दुख में सहभागी बनना होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ ही हमें समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा भी देना होगा। यहाँ कहना गलत नहीं होगा श्रोता साथियों कि वास्तविक प्रसन्नता किसी भौतिक वस्तु या व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं है, बल्कि सामूहिकता में निहित है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर जीवन जीते हैं कशिश, तो हमें सच्चा संतोष और खुशी प्राप्त होती है।
1: जी हाँ,
0: इसीलिए हमें अपने जीवन में सामूहिकता को स्थान देना होगा श्रोताओं, और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ हर व्यक्ति खुद को जुड़ा हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करे।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की सामूहिकता जीवन का वो आधार है जो मनुष्य को सच्ची खुशी, संतोष और मानसिक शांति प्रदान करता है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमें केवल साथ रहने की नहीं बल्कि साथ जीने की कला सिखाता है। साथियों, आज बदलते समय में जब व्यक्ति अपने आप में सिमटता जा रहा है, सामूहिकता ही वो सूत्र है जो हमें जोड़ सकता है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: और जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोताओं, हमें समझना होगा कि वास्तविक प्रसन्नता अकेलेपन में नहीं बल्कि मिलकर जीने में है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अब सवाल ये उठता है कि सामूहिकता से इतनी असली खुशी क्यों मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि सामूहिकता हमें अपनापन महसूस कराती है। हम अकेले नहीं होते हैं और हमारी समस्याएं भी हमें हल्की लगने लगती है, साथ ही हमारी खुशियाँ भी बढ़ जाती है जागृति जी। कहा गया है कि जैसे एक दीपक अकेला जलता है तो सीमित रोशनी देता है, लेकिन जब कई सारे दीपक एक साथ जलते हैं तो अंधेरा पूरी तरह मिट जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज के युवा सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं लेकिन दिल से अलग हो रहे हैं। ऐसे में युवा साथियों को चाहिए कि वे अपने रिश्तों को समय दें, परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहें और दूसरों की मदद करें।
0: जी हाँ,
1: युवा साथियों याद रखिए कि लाइक्स और फॉलोवर्स खुशी नहीं देते, सच्चे रिश्ते खुशी देते हैं। इसलिए रोज किसी एक व्यक्ति से दिल से आप बात करें, परिवार के साथ समय बिताएं, टीम वर्क में भाग लें और दूसरों की मदद करने की आदत डालें साथियों।
0: जी हाँ,
1: इससे हम कह सकते हैं कि सामूहिकता बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि सामूहिकता केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध और संतुलित बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: आज के तेज प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मकेंद्रित युग में जहां व्यक्ति अपनी सफलता और सुविधाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते अक्सर रिश्तों और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ देता है, वहां सामूहिकता एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे मार्ग को आलोकित करती है।
1: बिल्कुल,
0: यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली खुशी किसी अकेली उपलब्धि में नहीं है श्रोताओं, बल्कि साझा अनुभव, रिश्तों की गर्माहट और आपसी सहयोग में छिपी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम सामूहिकता को अपनाते हैं कशिश, तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही भावना श्रोताओं हमें अधिक संवेदनशील बनाती है, उदार बनाती है और जिम्मेदार बनाती है।
1: जी हाँ।
0: सामूहिकता हमें सिखाती है कशिश की जीवन का असली अर्थ केवल मैं नहीं बल्कि हम में है। मैं सीमित है लेकिन हम असीम संभावना और खुशियों का विस्तार है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम अपने सुख दुख, आशाएं और संघर्ष दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारा जीवन न केवल हल्का होता है श्रोताओं, बल्कि और भी अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और आज आवश्यकता इस बात की और है कि हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने परिवार, मित्रों, समाज के साथ जुड़े। हमें फिर से उन मूल्यों को अपनाना होगा श्रोता साथियों, जो हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं, जैसे कि संवाद हो गया, सहयोग हो गया, सहानुभूति हो गई और विश्वास। हमें समझना होगा श्रोताओं कि तकनीक और भौतिक सुख सुविधाएं हमारी जरूरतों को पूरा जरूर कर सकती है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वे हमारे दिल को सच्ची खुशी नहीं दे सकती हैं। सच्ची प्रसन्नता तो कशिश हमें तभी मिलती है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं और जब कोई हमारे होने से खुद को अकेला नहीं महसूस करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, जीवन का असली आनंद अकेले जीतने में नहीं है बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। ऐसे में सामूहिकता जैसी चीजें हमें सिखाती है कि साथ जीना कैसे है, साथ बढ़ना कैसे और खुश रहना कैसे सीखना है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप युवा साथियों सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में मैं की जगह हम को अपनाइए, क्योंकि वास्तविक प्रसन्नता अकेलेपन में नहीं बल्कि सामूहिकता में ही निहित है। याद रखिए साथियों कि अगर खुश रहना है तो साथ रहना भी आपको सीखना होगा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें हो चुकी है, अंत में छोटी मोटी बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमें भी अपने मन में ठान लेना चाहिए कि अपने जीवन में हम सामूहिकता को पुनः स्थापित करेंगे, हम अपने रिश्तों को महत्व देंगे, समाज के साथ जुड़ेंगे और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को अपनापन और सम्मान मिले।
1: बिल्कुल
0: कशिश, यही वो मार्ग है जो न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से खुशहाल बनाएगा बल्कि पूरे समाज को भी समृद्ध और सुखी बनाएगा।
1: जी हाँ,
0: सच्ची प्रसन्नता किसी एक व्यक्ति की निजी उपलब्धि नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक साझा अनुभूति है जो तभी जन्म लेती है जब दिल आपस में जुड़ते हैं, हाथ एक दूसरे का सहारा बनते हैं और जीवन एक सामूहिक उत्सव बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही सामूहिकता का सार है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ अब हम श्रोता साथियों कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: जी
0: हाँ। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
0: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।

0: बच्चों के अधिकार वाग्धारा संस्था और वागा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है।
1: प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य के खतरे को कम करें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।
0: जी हाँ साथियों, हरी भरी प्रकृति का है यह पैगाम, स्वस्थ सुखी हो हर इंसान।
1: वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है।
1: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
0: आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार। वाग्धारा संस्था एवं वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कमजोरी और खून की कमी से बच्चों को कैसे बचाएं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बच्चों का स्वस्थ सक्रिय और ऊर्जावान होना हर परिवार की चाहत होती है।
0: जी हाँ,
1: जब बच्चा खेलता है, सीखता है, दौड़ता है और हंसता है तभी उसका बचपन सही मायने में खिलता है। लेकिन कशिश, जब बच्चा बार बार थका हुआ लगे, सुस्त रहे, जल्दी बीमार पड़े, ध्यान न लगा पाए या उसका शरीर कमजोर दिखे तो यह सिर्फ सामान्य थकान नहीं बल्कि कमजोरी या खून की कमी का संकेत भी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज कई बच्चों में कमजोरी और खून की कमी एक छिपे हुए लेकिन गंभीर समस्या बनती जा रही है। कई बार माता पिता इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चा कम खाता है इसलिए कमजोर है या बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन श्रोता साथियों अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो यह समस्या बच्चों की पढ़ाई, शारीरिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहने वाली है। लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि कमजोरी और खून की कमी से बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं। साथियों आपको बताएं तो खून की कमी का मतलब सिर्फ शरीर में रक्त का कम होना नहीं होता,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि शरीर तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंच पाना भी एक समस्या हम कह सकते हैं अंजलि जी। इसका असर दोस्तों बच्चे की ऊर्जा, ध्यान और विकास पर पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि हम कमजोरी और खून की कमी को पहचानें, साथ ही उसके कारणों को समझें और बचाव के लिए उपाय अपनाएं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चे के शरीर में जरूरी पोषक तत्वों जैसे कि आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो सकती है। इससे श्रोता साथियों बच्चा कमजोर महसूस करता है और ये समस्या धीरे धीरे भी बढ़ती है और कई बार तो साथियों ये जल्दी समझ में भी नहीं आती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इसके लिए हमें इन सारी समस्याओं को पहचानने की जरूरत होती है। तो कुछ सामान्य संकेत है जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चा कुछ भी कार्य कर रहा हो तो वो जल्दी थक जाता है, चेहरा फीका या पीला दिखता है, पढ़ाई या खेल में उसका मन नहीं लगता, बार बार चक्कर और कमजोरी आती है, साथ ही भूख कम लगती है और बार बार बीमार पड़ना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चिड़चिड़ापन। श्रोता साथियों ऐसे संकेत दिखे तो इन सारे संकेतों को हमें गंभीरता में लेना है और तुरंत बच्चों को डॉक्टर को हमें दिखाना है। श्रोता साथियों कमजोरी और खून की कमी के कारण पोषण की कमी बच्चों के अंदर हो जाती है।
0: जी हाँ।
1: सही भोजन न मिलना सबसे बड़ा इसका कारण है। अगर बच्चे के भोजन में आयरन कम है तो खून की कमी हो सकती है। बार बार जो बीमारी है वो शरीर को कमजोर भी कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार यह भी होता है कि पोषण की कमी के कारण बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। जंक फूड ज्यादा खाना, पौष्टिक भोजन कम करना, ऐसी गलत आदतों के कारण भी ये समस्या बच्चों को हो जाती है। तो श्रोता साथियों इन सारी चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें बच्चों के अंदर के जो लक्षण है उन्हें पहचानने की कोशिश करनी है।
0: बिल्कुल,
1: हम बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें कि किस तरीके से बच्चों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अगर वो परिवर्तन हमें सामान्य नहीं लग रहा है तो तुरंत उनका चेकअप हमें डॉक्टर के पास जाकर कराना है।
0: जी जी,
1: अब यही बात आती है कशिश के बच्चों को कमजोरी और खून की कमी से कैसे बचाएं, तो बच्चों को आयरन से भरपूर भोजन दें, यानी कि बच्चों की थाली में ऐसी चीजें रखें जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चना, गुड़, दालें, मूंग, ये सभी हो।
0: बिल्कुल,
1: विटामिन सी बच्चों को जरूर दें, यानी कि आयरन के साथ विटामिन सी मदद करता है। नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर हमें बच्चों को देना है। श्रोता साथियों सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, बच्चों की थाली में अनाज, दाल, सब्जी, फल, दही सब कुछ होना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे जो है वो सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों को बताना है कि सुबह का नाश्ता उनके लिए बहुत जरूरी है। बच्चा अगर सुबह नाश्ता कर लेता है तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। इससे बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो भी वहाँ पर उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है और उसका शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहता है।
0: बिल्कुल,
1: और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बनी रहती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से जब बच्चों में खून की कमी की समस्या हो

0: इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान ही पा रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को कमजोरी और खून की कमी से हमें बच्चों को बचाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, सबसे पहले हमने जाना था कि आयरन से भरपूर हमें भोजन उन्हें देना है, विटामिन सी हमें उन्हें देना है, संतुलित भोजन देना है और भोजन छोड़ने की आदत हमें बच्चों में नहीं डालनी है।
1: जी जी।
0: इसी के साथ हमें कशिश बच्चों का जंक फूड कम करना है। बच्चे जो हैं वो चिप्स, पैकेट स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक, इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जिद करते हैं। श्रोता साथियों, इनसे पेट तो भर जाता है पर पोषण नहीं मिल पाता।
1: बिल्कुल।

0: संक्रमण कम करना है तो शरीर स्वस्थ रहेगा और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि डॉक्टर द्वारा बताए गए उपाय जब हम अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम हमारे बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से ठीक कर पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर बात करें तो माता पिता को कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले तो माता पिता ये ध्यान में रखे कि बच्चा क्या खा रहा है और साथ ही बच्चे को क्या पसंद है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों सिर्फ पसंद का खाना नहीं देना जरूरी नहीं होता, बल्कि बच्चों को साथ में पोषण भी देना होता है। बच्चा अगर आपको बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा है तो इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं करें। साथ ही अगर बात करें स्कूल जाने वाले बच्चों की, तो माता पिता को अंजलि जी स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: उनके भोजन को लेकर ध्यान दे श्रोता साथियों। साथ ही कीड़े की दवा और स्वास्थ्य जांच करवाते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप उन्हें ये बताएं कि अच्छा खाना खाना ताकत देता है, हरी सब्जियां उन्हें किस प्रकार से ढेर सारे फायदे दे सकती है, और आप उन्हें ये भी बोले कि कमजोरी छुपाने वाली चीज नहीं है बल्कि बताने वाली बात है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि कई बार बच्चे डर के कारण या फिर कह सकते हैं कि घबराहट के कारण अपने माता पिता को कुछ चीजें नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में माता पिता एक दोस्त की तरह अगर अपने बच्चे से बात करेंगे तो बच्चों को हम कह सकते हैं कि सेफ फील होगा, जिससे बच्चे अपनी हर बात अपने माता पिता से शेयर कर पाएंगे।
0: जी हाँ
1: अंजलि जी, कई बार गांव समाज में कमजोरी को सामान्य मान लिया जाता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बच्चा कमजोर पैदा होता है, कई बार पोषण की कमी उसे कमजोर बना देती है। ऐसे में जागरूकता से बहुत बदलाव संभव हो सकता है।
0: जी हाँ, इसी के साथ कशिश बात करें तो बच्चों में कमजोरी और खून की कमी को नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि बच्चों के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
1: जी,
0: सही खान पान, आयरन युक्त भोजन, स्वच्छता, समय पर जांच और जागरूकता से इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों को मजबूत बनाना सिर्फ अच्छा खाना खिलाना नहीं बल्कि उनके पोषण की जरूरतों को समझना है।
1: बिल्कुल,
0: स्वस्थ खून, मजबूत तन और सजग मन ही यही स्वस्थ बचपन की पहचान है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारे बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों में कमजोरी और खून की कमी केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि उनके वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा विषय है। एक कमजोर बच्चा कशिश केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि कई बार मानसिक, भावनात्मक और शैक्षिक रूप से भी प्रभावित हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो उसका असर धीरे धीरे बच्चे की ऊर्जा, एकाग्रता, सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास तक पहुंच सकता है। इसलिए समस्या को सामान्य समझकर टालना उचित नहीं है।
1: जी,
0: यह समझना जरूरी है कशिश कि बच्चों का स्वास्थ्य अचानक मजबूत नहीं बनता बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। घर की थाली, भोजन का संतुलन, समय पर खाना, स्वच्छता और परिवार की जागरूकता, ये सब मिलकर बच्चे के शरीर को ताकत देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लोग सोचते हैं कि पोषण का मतलब केवल महंगा भोजन है, जबकि सच यह है कि सही जानकारी और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ से भी बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है। जरूरत है समझदारी और निरंतर ध्यान की। कमजोरी और खून की कमी से बचाव केवल इलाज का विषय नहीं बल्कि रोकथाम की प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल,
0: अगर परिवार कशिश समय रहते लक्षण पहचाने, बच्चों के खान पान में सुधार करे और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा ले तो इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। श्रोता साथियों, इससे न केवल बीमारी कम होगी बल्कि बच्चे अधिक सक्रिय, प्रसन्न और सीखने के लिए तैयार रहेंगे।
1: जी हाँ अंजलि जी, हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसी के साथ ही बच्चों के पोषण को केवल घर तक सीमित मुद्दा नहीं हमें मानना है। यह समुदाय, स्कूल और समाज की भी साझा जिम्मेदारी है अंजलि जी, क्योंकि जब परिवार, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे तभी स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव तैयार हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर स्वस्थ समाज का निर्माण करता है साथियों। ऐसे में बच्चों को कमजोरी और खून की कमी से बचाना केवल उनके शरीर को मजबूत करना नहीं है बल्कि उनके सपनों, क्षमताओं और भविष्य को भी मजबूत बनाना है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जिस बचपन में दोस्तों पोषण, ऊर्जा और स्वास्थ्य होता है वही बचपन आगे चलकर आत्मनिर्भर और उज्जवल जीवन की राह बनाता है अंजलि जी।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चों की थाली में पोषण, जीवन में ऊर्जा और शरीर में स्वस्थ खून, यही मजबूत बचपन, सशक्त भविष्य की असली बुनियाद है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में आज श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें रही है कि बच्चों में कमजोरी और खून की कमी को हमें कैसे दूर करना है और किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं

0: दो छोरों को पीट रहा है कि इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी।
1: गाली तो उसने मन दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की क्या जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तुझे भी क्या देगी, सब कराएंगे
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साढ़ भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

तभी भी मैंने मैं भी तो नहीं हुई पूछने वाली थी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हो हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। नमस्कार।

0: अरे सुषमा, आज तूने तेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा?
1: अरे दीदी, स्कूल जाकर क्या करेगा, करना तो वही है ना जो हम करते आ रहे हैं।
0: अरे अरे नहीं सुषमा, हम जो करते आ रहे हैं वही हमारे बच्चे करें, जरूरी तो नहीं है ना। ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इससे बच्चों का जीवन सुधर जाए।
1: अरे दीदी, आपकी बात सही है, मैं भी चाहती हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करें, पर देखो ना हालात ही कुछ ऐसे हैं।
0: सुषमा, हालात तो बनते और बिगड़ते हैं, पर हमें हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही उनका जीवन सुधरता है।
2: जी हाँ साथियों, शिक्षा जीवन का आधार, इसकी बिना है सब बेकार। जो पाता है जीवन में शिक्षा, उसकी होती है पूरी हर इच्छा।
1: शिक्षा जीवन का आधार, जो करती सबके सपनों को साकार। बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा देकर संसार को बेहतर बनाओ।
3: जी हाँ, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। शिक्षा, अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार।
0: शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। शिक्षा पर जोर होगा तभी देश प्रगति की ओर होगा।
1: आओ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे, एक नए सुखद कल का निर्माण करें।
2: वागड़ रेडियो, वागधारा संस्था, बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवावारा मार हित्ता किसान भाई बोने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाइयों बोनो आप सब हमले रिया हो अपड़ू सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नो घनी मान स्वागत करे हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: भाई बोनो लेने हाजिर थे गया हो कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे मनीषा बोन आज कार्यक्रम में अपना भाई बोनो की बातचीत में विषय है की अपने देखो हो के आज गर्मी ना दाड़ा साली रहे इनमें अचानक तेज वायरो आपा मनीषा
0: होवे
1: ने एवो में आपली जे फसल है इने नुकसान थी सके ता से आपणे जाणंगा के आ तेज वायरो आवे तो इन तकी आपणे आपली फसल नी सुरक्षा हरते करी शको
0: होवे
1: बाते आपणे भाई बोनो तकी घणा कानी थाईंगा पण कार्यक्रम शुरू कर इने पहला आपणे भाई बोनो ने हमरावी दा की मोरे कर आपणी वाते
0: होवे अंजलि बोन। तो भाईयों बोनो हमर तारेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते

0: बहन बोनाना गीत बाद आप सभी नु फेरे स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के अंजलि बोन गीत थे की पहले आपे विषय बताड़ियो हतु कि आज ये अपन बात करवा वाला हूँ जोर में वायरस आले तो वना खती अपन फसल नु बचाव हेते करू। बहन बोनो अपन देखा की आपकी खेती है वे प्रकृति मत आधारित रहे जेन करते अपने मौसम ने जी नानी मोटी स्थिति रहे है वन हिदू प्रभाव अपने फसल माते पड़े है। कारेक ज्यादा वर्षा पड़ी जाए कारेक हुकू पड़ी जाए ने कार्य खूब ज्यादा वायरस आले है। आन सब कती अंजलि बोन आपड़े किसान भाई बोन ने खेती माते असर पड़े है। अपन देखा हो कि तेज वायरो ने आंधी नी जे समस्या है अना कती आपड़े फसल माते खूब ज्यादा नुकसान था है।
1: हवे मनीषा बोन आपड़े देखा हो कि आपड़े जे किसान भाई बोन है ये हेत तो वर मेहनत करे है अपनी फसल ने तैयार करवा बल्ले ये मिट्टी जोते है बीज नाके है सिंचाई करे है खाद डाले है ये रात और दाड़ो इनमें मेहनत करे है ताकि इन्होंने खेतरों में हरियाली बनी तकी रहे। पर आपने देखो हो

0: मोटा अनाज मोटा अनाज।
1: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
2: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
0: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
1: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
2: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चों के अधिकार।
0: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
4: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
2: बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
4: वाग्धारा संस्था और वाग रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाव रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं लेकर हाजिर कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा विषय रहेगा आपसे बातचीत का कि गांव के विकास में वार्ड पंच की क्या भूमिका होती है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, भारत को गांव का देश कहा जाता है और ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। देश की आत्मा गांवों में बसती है और इन गांवों का समुचित विकास ही राष्ट्र की प्रगति का आधार बनता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो पंचायत व्यवस्था का महत्व स्वतः ही सामने आता है। इसी पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है वार्ड पंच। श्रोताओं, वार्ड पंच केवल एक पद नहीं बल्कि गांव के हर छोटे बड़े कार्यों का जिम्मेदार प्रतिनिधि होता है।
1: बिल्कुल,
0: वो अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को समझता है, उनके समाधान के लिए प्रयास करता है और विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले बातचीत भी रही थी और विषय भी बताया था कि आज हमारा आपसे बातचीत का विषय है गांव के विकास में वार्ड पंच की भूमिका को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसा कि अंजलि कहा गया है कि गांव की हर राह आसान तभी बनती है जब वार्ड पंच

0: पहुंचाते हैं और उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि गांव के विकास में वार्ड पंच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वार्ड पंच ग्राम पंचायत का वह सदस्य होता है जो गांव के एक विशेष वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है जो स्थानीय लोगों की आवाज बनकर पंचायत में उनकी बात रखता है।
1: जी हाँ।
0: यही बात करें जागृति जी कि गांव के विकास में वार्ड पंच की क्या भूमिका है, तो श्रोता साथियों, जनता और पंचायत के बीच का सेतु यानी कि वार्ड पंच अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं जैसे कि पानी की कमी, सड़क की खराब स्थिति, बिजली की समस्या को पंचायत तक पहुंचाता है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, इन योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में वार्ड पंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों, वार्ड पंच ग्राम पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य होता है। जैसा कि अंजलि आपने बताया, वार्ड पंच अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहता है, इसलिए उसे हर छोटी बड़ी समस्या का ज्ञान होता है, चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़क की खराब स्थिति हो या सफाई की कमी। वार्ड पंच इन सभी मुद्दों को पहचानकर पंचायत में उठाता है। वो केवल समस्या बताने तक सीमित नहीं रहता श्रोताओं, बल्कि समाधान ढूंढने में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल।
1: सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा। वार्ड पंच का कर्तव्य होता है कि इन योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाए। वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे। कहा गया है कि योजना तभी सफल कहलाती है जब

0: को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का कार्य करते हैं। इससे गांव में बीमारियों को कम किया जा सकता है। इसी के साथ वार्ड पंच बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता है और शिक्षा के महत्व को समझाता है, और वह यह भी सुनिश्चित करता है कि विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। गांव में होने वाले छोटे मोटे विवादों को सुलझाने में भी वार्ड पंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल,
0: वह आपसी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं जागृति जी की वार्ड पंच महिलाओं, दलितों और गरीब वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करता है। वह उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है।
1: जी हाँ अंजलि, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि गांव के विकास में जागरूकता बहुत जरूरी होती है। वार्ड पंच लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। वो लोगों को समझाता है कि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना भी जरूरी है। श्रोताओं, स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। वार्ड पंच अपने क्षेत्र में साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रयास करता है अंजलि। वो शौचालय निर्माण को बढ़ावा देता है, कचरा प्रबंधन के उपाय अपनाता है और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि स्वच्छ गांव स्वच्छ समाज यही विकास का पहला राज है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है। श्रोताओं, वार्ड पंच बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता है और स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करता है।
0: जी जी,
1: वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं कि गांव के विकास में किस तरीके से वार्ड पंच की भूमिका होती है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने।

0: सबसे पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बताना चाहेंगे कि वार्ड पंच ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को रखता है और वही ये भी सुनिश्चित करता है कि निर्णय पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो।
1: बिल्कुल,
0: वार्ड पंच गांव के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वन का सही उपयोग सुनिश्चित करना और उनके संरक्षण के लिए कार्य भी करते हैं। बाढ़, सुखाव और कोई भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस समय वार्ड पंच राहत कार्यों में मदद करता है और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि वार्ड पंच गांव की वास्तविक स्थिति को सबसे अच्छी तरह समझता है।
1: जी हाँ,
0: वह स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होता है। वार्ड पंच लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करता है, वह जनता के विश्वास का प्रतीक होता है और उसकी सक्रियता से गांव में तेजी से विकास

0: हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, एक सफल वार्ड पंच में कई सारे गुण होते हैं, जैसे कि ईमानदारी के गुण होते हैं, नेतृत्व क्षमता के गुण होते हैं, सहानुभूति के गुण होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके अंदर और समाज सेवा की भावना होती है। इसलिए कहा गया है कि ईमानदारी और सेवा भाव वार्ड पंच की पहचान होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि गाँव के विकास में वार्ड पंच की बहुत ज्यादा भूमिका है। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, वो एक निर्णायक होता है, वो न केवल समस्याओं को समाधान करता है बल्कि गाँव को एक नई दिशा भी देता है। यदि वार्ड पंच अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाए अंजलि, तो गांव का हर कोना विकास की रोशनी से जगमगा सकता है।
0: बिल्कुल
1: आज जरूरत है ऐसे वार्ड पंचों की जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करें, जो हर व्यक्ति की आवाज को सुने और उसे सम्मान दे। श्रोताओं, गांव का विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि सभी के सहयोग का परिणाम होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस सहयोग को दिशा देने वाला यदि कोई है तो वो वार्ड पंच ही है। इसलिए हम ऐसे वार्ड पंच को चुने और बने जो अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का सपना देखे ही नहीं बल्कि उसे साकार भी करें, क्योंकि सशक्त वार्ड पंच, सशक्त गांव, यही है भारत के विकास का सही पड़ाव।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांव के विकास में वार्ड पंच की भूमिका केवल एक प्रतिनिधि तक सीमित नहीं है बल्कि वो एक मार्गदर्शक, प्रेरक और परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता होता है। यदि वार्ड

0: बल्कि धरातल पर उतरे और यह कार्य वार्ड पंच के माध्यम से ही संभव होता है।
1: बिल्कुल,
0: वह लोगों की उम्मीदों और सरकार की नीतियों के बीच एक मजबूत कड़ी बनकर कार्य करता है। इसलिए श्रोता साथी, यह आवश्यक है कि हम वार्ड पंच के महत्व को समझें, उनका सहयोग करें और उन्हें सशक्त बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: जागरूक और सक्रिय पंच ही गाँव को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध बना सकता है और यही एक सशक्त भारत की पहचान होगी।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव का विकास केवल योजनाओं, बजट और नीतियों से संभव नहीं होता, बल्कि उन लोगों की सोच, ईमानदारी और समर्पण पर भी निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
1: जो उन योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं, वार्ड पंच इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु बनकर खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब एक वार्ड पंच अपने कर्तव्यों को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम समझकर निभाते हैं, तब गांव में बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि हर गली, हर घर और हर दिल तक पहुंचता है।
0: बिल्कुल,
1: उसकी मेहनत से सूखी जमीन पर भी विकास के फूल खिलते हैं, टूटी सड़कों पर उम्मीदों के कदम बढ़ते हैं और अंधेरों में भी उजाले की किरण दिखाई देने लगती है।
0: जी हाँ,
1: आज आवश्यकता है श्रोताओं ऐसे वार्ड पंचों की जो पद के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए काम करें, जो अपनी पहचान सत्ता से नहीं बल्कि सेवा से बनाए, जो हर समस्या को अपनी समस्या समझे और हर समाधान को अपना कर्तव्य माने। याद रखिए श्रोता साथियों, गांव का हर छोटा परिवर्तन एक बड़े बदलाव की शुरुआत होता है और इस शुरुआत का सूत्रधार वार्ड पंच ही होता है अंजलि। यदि वो जागरूक, ईमानदार और दूरदर्शी होगा तो गांव केवल विकसित नहीं होगा बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और आदर्श भी बनेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि गांव के हर व्यक्ति

0: में बदल जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, असल में वार्ड पंच गांव की धड़कन को समझने वाला वह चेहरा है जो विकास को केवल योजनाओं में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में उतारता है। इसलिए यदि

0: संतुलन देखने को हमें मिल पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि अब समय भी आ गया है कि हम केवल अच्छे वार्ड पंच की उम्मीद न करें श्रोताओं, बल्कि खुद भी जिम्मेदार नागरिक बनकर उनका साथ दें, क्योंकि जब जनता और प्रतिनिधि एक साथ मिलकर काम करते हैं तब विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: गाँव की असली ताकत उसकी एकता, जागरूकता और नेतृत्व में छिपी होती है, और जब ये नेतृत्व एक सच्चे वार्ड पंच के हाथों में होता है तो कोई भी बाधा विकास के रास्ते में टिक नहीं सकती।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोताओं चलो मिलकर एक संकल्प ले, न केवल अच्छा वार्ड पंच चुनेंगे बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जहां वार्ड पंच ईमानदार है, जागरूक है, वही गांव बनता है मजबूत और खुशहाल।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातचीत रही है कि किस तरीके से गांव के विकास में वार्ड पंच की भूमिका होती है, आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है।
1: प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वास्थ्य के खतरे को कम करें। पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।
0: जी हाँ साथियों, हरी भरी प्रकृति का है यह पैगाम, स्वस्थ सुखी हो हर इंसान।
1: वागड़ रेडियो 90.8 FM द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ताजी खबर, ताजी खबर। कमला ने घोर में चार बैरिए साने साने भराई गई। कौन हती कमला आ बैरिए?
2: अरे आ सब तो मारी दोस्तनी हती। आ सब खबर लेवा आवी हती कि मारी मुन्नी नो तंदुरुस्ती नो राज हूँ है।
0: हूँ है राज? अमनी भी बताड़ो।
2: 100 महीना था तमेस पेट पूजा। रसोड़ा में जी भी हो चिम की दाल चावल ले लो, शाक भाजी मलावी ने बनावो, आने पीसी ने गाड़ू बनावो, ने अगर आपड़े घोर में घी हो तो ऊपर थकी घी मलावो, ने सोरा ने खवड़ावो, दाड़ा में तर्ण वकत हो ग्रामनी कटोरी में।
0: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। वागड़ रेडियो वाग्धरा संस्था द्वारा जनहित में जारी।
3: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है।
1: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
0: आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प।
3: कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार।
0: वाग्धरा संस्था एवं वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: बहन बोनो अणा गीत बाद आप सभी नु फेरे स्वागत करे हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में। जिम के अंजलि बोन आपे गीत थकी पहले विषय बताड़ियो हतु कि आज आपण बात करवा वाळो हूँ। आपणे बोने एवे खुद ने कम आकवा खती हेते रोके आपण देखो हाँ कि आपणे समाज ने विकास में आपणी बोनो ने भूमिका घणी महत्वपूर्ण रहे। आज ने महिला आपण देखो हाँ कि शिक्षा विज्ञान राजनीति खेल कला अणा सब में आपणी पहचान बनावी रही है। एने बावजूद आपणी बोनो ने हामो आवे एक वे वे खुद ने कम हमजा मंडी जाए। आ केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं अंजलि बोन बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक मानसिकता नु परिणाम भी है। जारे अपनी बोन अपनी क्षमता ने कम समझवा मंडे तारे वे अपने अवसर खुदी पसाड़ी हटी जाए है। अपने सपनों ने सीमित करी ले है ने आत्मविश्वास ने भी कम करी ले है। इने साथ अंजलि बोन अपन देखो हूँ की पहला टाइम में अपने बोने भी पुरुष कती कम समझती थी खुद ने वे होसती थी कि मतलब घर वाला होसतो हतो कि आपणे बोने हुं करी शकी आते घर ने काम तक ही सीमित है। आनी सोचे आपणे बोने मन नी धारणा ने सीमित करी नाख्यू। बालपण खती संजली बोन आपणे देखो हां कि आपणे बोने ने हमजाड्यू जाए कि वी पुरुष ने बराबर नती करी शकती है वणन बराबर काम नती करी शकती है ते आज जे धारणा है वे आपणे बोने ने आत्मविश्वास ने प्रभावित करे है।
1: हवे मनीषा बोन आपणे देखो हां कि आपणी जे बोने है घना आकाना अवसर है शिक्षा रोजगार नेतृत्व खेल विज्ञान ने हर क्षेत्र में अपनी जो बोने है ये अपनी पहचान बनावी रही है। पर एना ने सामने एक समस्या आवी ने उभी थई सा ई है कि ये खुद ने बीजा तक की कम मानी ले है। घना कनी भी बोने है जे अना कारण अपनी जे एना ने क्षमताएं है एना में जो प्रतिभा है योग्यताएं है एना ने ओरखती नहीं खुद ने बीजा तक की कम समझी ले है। आ समस्या केवल व्यक्तिगत स्तर माते सीमित नथी बल्कि आपणे देखो हो के समाज परिवार ने आवावारी जे पीढ़ी है एना ने माते भी असर नाखे है। जई वगत एक बोन खुद ने कम हमसे है तो ई आपणा जे हपना है एणन तकी वाई रीसा ने एने साथे आपणे देखो हो के आपणी जे बोने है एना ने एनी सोच तकी बारते निकलवानी जरूरत है ने आत्मविश्वास तकी भर्यु जीवन एना ने जीवो होका। अगर आयस बात करो कि खुद ने बिजत की कम समझवानो हूँ मतलब है तो एनो मतलब है कि आपड़े आपड़ी योग्यता क्षमता ने महत्व नहीं आलता। आपड़े आने घना रूपम देखी शक जिंकी मु आ नहीं करी शकती जेवी सोच घनी वक्त आपड़े देखो हो कि आपड़ी जो उपलब्धि है इतनी नानी है बिजत तकी आपड़े तुलना कर दो निर्णय लेवा तकी डर ने बीजा ने राय आलवा तकी भी आपड़े बीज तो आ कुछ एवी आदतें हैं जे आपड़े मानसिक स्थिति ने प्रभावित करे है ने धीरे धीरे आपड़ा जीवन ने पूरी तरीका तकी प्रभावित करी शके है।
0: होवे अंजलि बोन एने साथे आपण देखा हां कि आपड़ी बोनी ही भी अक्सर आपड़े खुद ने बीजा कदी कम समझी ले है चाहे वो रंग रूप हो करियर हो या जीवन शैली हो। सोशल मीडिया ने प्रवृत्ति आज अपन देख रही थे अभी ना टाइम में बढ़ी रही है जहाँ हर कोई मनक है वो अपने पक्ष ने बेहतर बनावा बल्दे मंडियू है। एन खते महिला नी जे वे सोचे वे भी पसाड़ी रह गई है बीजे खते अपने खुद ने तुलना करे है। एने साथ अपन देखा है कि अपनी बोने ही भी असफलता खती डेरी जाए है। अपने बोने कई वक्त होते है कि अगर हूँ असफल थी गई आ लोग मार बारा में हूँ होशींगा हूँ नहीं करी सकती एम कर प्रयास करवो भी छोड़ नाखे वेस में ने आ खुद ने स्वीकार भी नहीं करती है अपनी कमियां देखी ने भी वर्णन नजरअंदाज कर दी है। आज कारण अणाखती अपने बोने पसाड़ी रही है वर्ण आत्मविश्वास भी कम थी जाए ने भी आत्मनिर्भर नहीं बनी पाती।
1: हवे मनीषा बोन आपे सही कीधु तो अणी प्रकार थी आज कार्यक्रम में अपने घनी असल तरीका थकी ई जाणी रहो कि अपनी जो बोने है ई बीजे थकी खुद ने कम समझवु हरते बंद करे ने आ जे आदत है ई एणाने जीवन ने हरते हदारी शके। तो आ वाते आपणे अगाड़ी कार्यक्रम ने माध्यम थकी आपणी बोने थकी हमस करता रंगा पर मारू मन थई रह्यु है कि केमने आपणी बोने ने आपणे गीत हमरावी दो।
0: होवे अंजलि बोन

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चों के भविष्य को बचाना है, बाल विवाह को दूर भगाना है।
0: खेलने कूदने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है।
3: आओ ले सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प। कोई भी बच्चा ना छूटे इस बार, शिक्षा पर है सबका अधिकार। वाग्धरा संस्था एवं वागर रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, थोड़ा रुकना भी जरूरी है, खुद से मिलना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब बस भागते जा रहे हैं, काम के पीछे, सपनों के पीछे और कभी कभी दूसरों की उम्मीदों के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या हर वक्त भागना ही जरूरी है या कभी कभी रुकना भी उतना ही जरूरी है? आज हम बात करेंगे जिंदगी में ठहराव क्यों जरूरी है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम का दस्तूर है कि शुरुआत में हम आपको गीत संगीत के साथ में मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी सबसे पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में ठहराव क्यों जरूरी है उसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम रुकना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि रुकना मतलब पीछे रह जाना। कभी कभी हमें डर लगता है कि लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें सिखाया गया है कि चलते रहो, रुको मत। लेकिन क्या हर समय चलते रहना ही सही है? तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि किसी ने क्या खूबी कहा है कि कभी कभी रुकना हार नहीं खुद को समझने का मौका है। ठहराव का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ छोड़ दें या आप कमजोर हो जाएं। ठहराव का मतलब है थोड़ा रुकना, सांस लेना, खुद से पूछना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों। ठहराव हमें ये समझने का मौका देता है कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हम सच में खुश हैं और क्या हम खुद को खो तो नहीं रहे। ठहराव साथियों रास्ता नहीं रोकता, वह रास्ता सही करता है। अब यही बात आती है कि ठहराव के आखिरकार फायदे क्या हो सकते हैं हमें। तो दोस्तों, जब हम ठहरते हैं तो खुद से जुड़ाव होता है, हम खुद को सुन पाते हैं। भागते भागते लिए जो फैसले हैं वो अक्सर गलत होते हैं, लेकिन ठहराव हमें सोचने का समय देता है। लगातार भागने से मन थक जाता है, ठहराव उसे आराम देता है। कई बार रुकने पर ही हमें नई राह दिखाई देती है, इसलिए दोस्तों रुक कर देखना सिखाता है हमें ठहराव कि हम कहाँ खड़े हैं। दोस्तों एक बात बताइए कि अगर हम बिना रुके चलते रहेंगे तो क्या होगा? हो सकता है दोस्तों कि हम बहुत आगे निकल जाएं, लेकिन गलत दिशा में। इसलिए कभी कभी ठहरना जरूरी है ताकि हम सही रास्ते पर चलें। अब बहुत सी बार ये सवाल आ जाता है कि हम ठहरे कैसे आखिरकार, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ठहरना पसंद ही नहीं होता है। वो निरंतर अपने जीवन में कुछ न कुछ अपने लक्ष्य को लेकर करते ही रहते हैं। तो ठहराव की आदत हमें डालनी है कि कुछ मिनट हम पूरे दिन में खुद के लिए निकालें, मोबाइल और भागदौड़ से थोड़ा दूर रहें, अपने मन की सुनें और खुद से सवाल करें। साथियों, जो खुद के साथ समय बिताता है वही खुद को समझ पाता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है दोस्तों, जहां सबसे तेज भागने वाला जीतता है। यह एक सफर है जिसे समझकर महसूस करके जीना होता है। इसलिए थोड़ा रुकिए, क्योंकि ठहराव ही आपको फिर से चलने की ताकत देता है। जिंदगी में ठहराव जरूरी है क्योंकि वहीं से असली समझ शुरू होती है। इसलिए साथियों कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से, रुक कर देखो, समझो खुद को, यही है जिंदगी का सच्चा रास्ता। तो बातें कार्यक्रम में दोस्तों हमारी बहुत अच्छी चल रही है कि जिंदगी में ठहराव क्यों जरूरी होता है और किस तरीके से हम अपने जीवन में खुद से कुछ सवाल कर सकते हैं। तो ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन का। तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दोस्त अंजलि के साथ में।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460000।

शून्य पाँच एक दो तीन चार। तो साथियों फिर मुलाकात होगी अगली सभा में, तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।